90.8 FM झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। एक संत गंगा के किनारे आश्रम में रहकर शिष्यों को पढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने रात होते ही अपने एक शिष्य को एक किताब दी और बोले, इसे अंदर जाकर मेरे तख्त पर रखाओ। शिष्य पुस्तक लेकर लौट आया और कांपते हुए बोला, गुरुदेव, तख्त के पास तो एक सांप है। संत जी ने कहा, तुम फिर से अंदर जाओ, ऊपर वाले को याद करना और सांप भाग जाएगा। शिष्य फिर अंदर गया। उसने ऊपर वाले को याद किया। उसने देखा कि काला सांप वहीं है। वो फिर डरते डरते लौट आया। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा, इस बार तुम दीपक हाथ में लेकर जाओ, सांप दीपक के प्रकाश से डरकर भाग जाएगा। छात्र दीपक लेकर पहुंचा तो प्रकाश में उसने देखा कि वो सांप नहीं, रस्सी का एक टुकड़ा था। अंधकार के कारण उसे सांप जैसा दिखाई दे रहा था। संत जी को जब उसने रस्सी होने की बात बताई तो वो मुस्कुराकर बोले, बेटे, संसार गहन भ्रम जाल का नाम है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रम जाल को काटा जा सकता है। अज्ञानता ही हम सब में बहुत भ्रम पाल देती है। उन्हें दूर करने के लिए हमेशा ज्ञान रूपी दीपक साथ में रखना।

90.8 FM रेडियो टेंटिया भील पर आप हैं आरजे समीर के साथ भक्ति में दिव्य दर्शन प्रोग्राम में। बोलो की कड़वाहट फिर भी चल जाती है, मगर भगवान के घर में मन की कड़वाहट की कोई जगह नहीं।

ईसा मसीह अपने शिष्यों को अच्छाई का प्रचार प्रसार करने का उपदेश दिया करते थे। वो कहते थे, केवल उपदेश देने में समय नहीं गंवाना चाहिए, अपने हाथों से रोगियों, असहायों या अनाथों की सेवा का आदर्श भी उपस्थित करना जरूरी है। लोगों के बीच दया, करुणा, शांति, अहिंसा की भावना का प्रचार भी जरूरी है। उन्होंने शिष्यों को बताया कि अपना उद्देश्य निर्धारित करो कि बीमारों को निरोग बनाना है, लोगों को नशे से मुक्ति दिलाकर अच्छे रास्ते पर लाना है, किसी के घर में प्रवेश करते ही प्रेम पूर्वक सहायता की पेशकश करनी है, यदि कोई कटु वचन भी बोले तो क्रोध नहीं करना है। उन्होंने कहा, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे लेकिन तुम शांति और धैर्य बनाए रखना। ये समझ लेना कि वे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। सत्य अहिंसा पर अटल रहने वालों को कोई मार नहीं सकता। ईसा जानते थे कि धन संग्रह की प्रवृत्ति भय, कलह आदि को जन्म देती है, इसलिए उन्होंने शिष्यों से कहा कि अपने साथ सोना, चांदी के सिक्के आदि बिल्कुल न रखना।

रेडियो टेंटिया भील 90.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं भक्तिमय दिव्य दर्शन। अगर आप भगवान पर विश्वास करोगे तो आपको उलझनों में भी रास्ते दिख जाएंगे।

एक बार राजा अम्बरीश वन से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक युवक खेत में हल जोत रहा है और बड़ी मस्ती से ऊपर वाले की भक्ति के भजन गा रहा है। राजा उसकी मस्ती से बहुत प्रभावित हुए और खेत के ही मेड़ पर खड़े होकर उसका भजन सुनते रहे। जब उसने राजा को देखकर गाना बंद कर दिया तो राजा ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम्हारी मस्ती देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई है, इस अनूठी मस्ती का राज क्या है? युवक ने बताया, दादा, मैं अपनी मेहनत की कमाई बांट कर खाता हूं, हर समय ऊपर वाले को याद करता हूं और संतुष्ट रहता हूं, इसलिए हमेशा खुश और मस्त रहता हूं। मुझे लगता है कि जैसे भगवान हमेशा मुझ पर कृपा की बरसात ही करते रहते हैं। राजा ने पूछा, तुम कितना कमा लेते हो बेटे, उसे किस तरह बांटते हो? युवक ने बताया, मान लीजिए मैं 1 रुपया रोज कमाता हूं, उसे 4 जगह बांट देता हूं। माता पिता ने मुझे पाला पोसा है, कृतज्ञता के रूप में उनको 4 आने भेंट कर देता हूं, 4 आने बच्चों पर खर्च कर देता हूं, 4 आने में मैं गरीबों, अपाहिजों और बीमारों की सेवा कर देता हूं, 4 आने में अपना और पत्नी का खर्च चला लेता हूं। राजा को अनपढ़ किसान युवक की मस्ती का राज समझ में आ गया।

महान संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के पास एक वृद्ध सज्जन पहुंचे। वो कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए थे। घर में बैठे बैठे उन्होंने अनुभव किया कि बेटा और बहू उनकी उपेक्षा करने लगे हैं। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, महाराज आप मुझे ऐसे गुण बताने की कृपा करें कि मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए सम्मानजनक ढंग से जी सकूं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको चार बातें बता देता हूं, उनका पालन करिए तो परिवार में प्रिय बने रहेंगे। वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर मत रहिएगा, कोई ना कोई काम करते रहिए जिससे सभी आपकी उपयोगिता को समझें। कम से कम बोलिएगा, ज्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों क्षीण हो जाते हैं। बिना मांगे सलाह मत दीजिएगा। और चौथी बात यह है कि सहने की आदत डालिए, सहते चलिए। सहनशीलता ही परिवार को साथ रखने का प्रमुख माध्यम है। उस वृद्ध सज्जन ने तत्काल स्वामी जी के इन चारों बातों का पालन करना शुरू कर दिया। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें।

एक बार संत ज्ञानेश्वर नदी के तट पर भगवान नाम का जाप कर रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक अन्य संत भी आंखें बंद करके ऊपर वाले का ध्यान कर रहे थे। नदी में स्नान करने के लिए आए एक बच्चे का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बहने लगा। बच्चा चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे डूबने से बचाओ। ध्यान कर रहे संत ने बच्चे की आवाज सुनी, उसे नदी में बहते देखा और बस पुनः आंखें बंद करके ध्यान में लग गए। संत ज्ञानेश्वर तुरंत नदी में कूद गए। डूबने की परवाह किए बिना वो बच्चे को बचा लाए। संत ज्ञानेश्वर ने ध्यान में बैठे महात्मा से कहा, प्रभु क्या आपने दर्शन देने आए बाल रूपी भगवान की आवाज नहीं सुनी? भगवान बालक का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, और तुम्हारे हृदय में करुणा भाव है या नहीं? किसी निरीह बच्चे को संकट में देखकर उसकी चीख पुकार सुनकर भी आंखें बंद कर लेना, ध्यान लगाना क्या पाखंड नहीं है? महात्मा की आंखें खुल गईं। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वो आज से सेवा और सहायता को ही अपना धर्म मानेंगे।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। जिस पर रहती है कृपा भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी

0: मृत्यु का जश्न। रोम का सम्राट किसी बात पर अपनी मंत्री से शुद्ध हो उठा। उसे लगा कि मंत्री भगवान को मुझसे बड़ा मानकर मेरा निरादर कर रहा है। राजा के मन में ईर्ष्या की भावना इतनी प्रबल हो उठी कि उसने निर्णय लिया कि जब मंत्री अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाएगा, उसी दिन उसे फांसी दे दी जाएगी। मंत्री के जन्म दिवस पर भजन, संगीत और भोज का आयोजन था। उसी समय राजा के दूत ने एक लिखित आदेश मंत्री को थमा दिया। उसमें लिखा था, आज शाम 6 बजे मंत्री को फांसी दी जाएगी। यह आदेश पढ़ते ही मंत्री के कुटुंबी और मित्र हतप्रभ रह गए। पत्नी और बेटे रोने लगे, लेकिन मंत्री उठा, भगवान का स्मरण करके नाचने लगा। दूत यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने राजा को बताया कि फांसी का आदेश मिलने पर भी मंत्री मायूस ना होकर नाच रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि कुछ घंटे बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा? मंत्री ने कहा, राजन, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं आज के ही दिन जन्मा था। आपकी कृपा से आज ही इस नश्वर शरीर को छोड़कर प्रभु में लीन हो जाऊंगा। आज तमाम रिश्तेदार मित्र यहां मौजूद भी हैं। मेरी मृत्यु को आनंद महोत्सव में बदलकर आपने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया है। राजा ने कहा, तुमने तो मृत्यु को भी जीत लिया। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही तो जीवित है। राजा ने मंत्री की फांसी की सजा डाल दी।
1: मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।

मैं दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक छोटा सा चर्च और एक बड़ा सपना। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, ना ये फिल्मी है, ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल है कि सुनते ही दिल से सीधा आसमान की तरफ देखने का मन करेगा। 1962, एक अलग इंडिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1962, एक नया देश अभी अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा है। लोगों के पास बेसिक चीजें तक नहीं है, कई जगह लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बोले हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सीरियसली क्या कहोगे अभी इस टाइम में? लेकिन कुछ लोग अलग सोचते हैं। दोस्तों हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। और ऐसे ही एक इंसान एक दिन चलते हुए पहुंचते हैं केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज में, जिसका नाम है थुम्बा, एक शांत जगह समुन्दर के पास, और वहां एक छोटा सा चर्च। एक अजीब सी रिक्वेस्ट, वो इंसान अंदर जाता है और बिशप से मिलता है, और फिर वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो कहता है, क्या मैं ये चर्च बोरो कर सकता हूँ? बिशप थोड़े हैरान होते हैं, प्रेयर के लिए चाइल्ड? वो कहता है, नहीं, रॉकेट्स के लिए। सोचिए, चर्च और रॉकेट्स एक साथ, जी हाँ एक साथ, और फिर हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब नॉर्मली क्या होता है, इम्पॉसिबल राइट? इम्पॉसिबल साउंड करता है, ये जगह प्रेयर के लिए है, ये काम कहीं और करो। लेकिन उस दिन एक अलग डिसीजन लिया गया। बिशप ने कहा, ठीक है, 100 दिन, और सब बदल गया। सिर्फ 100 दिन के अंदर फिशरमैन को रिस्पेक्टफुली रिलोकेट किया गया, उनके लिए नया चर्च बना, और पुराना चर्च बदल गया इंडिया के पहले स्पेस रिसर्च लैब में। प्रेयर हॉल लैब बन गया, प्रीस्ट का घर डिजाइन ऑफिस बन गया, और चर्च के पास का कैटल शेड रॉकेट वर्कशॉप बन गया। दोस्तों ये सिर्फ जगह का चेंज नहीं था, ये सोच का चेंज था। रिसोर्सेस कम लेकिन जुनून अनलिमिटेड। ना कोई एडवांस्ड मशीन्स, ना कोई बड़े लैब्स, ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे, हाँ साइकिल पर। आज के टाइम में जहां हम डिलीवरी 10 मिनट लेट हो जाए तो कंप्लेंट्स करते हैं, वहां रॉकेट पार्ट्स साइकिल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सोच के देखिए दोस्तों, एक यंग साइंटिस्ट की कहानी। एक यंग साइंटिस्ट रात भर काम करता था। एक बार उसने पूरी रात एक नोज कोन को हाथ से फाइल किया ताकि प्ले लोड परफेक्टली फिट हो सके। सोचिए, मशीन नहीं, हाथ से। और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे।
लेकिन जुनून फुल ऑन था। 21 नवंबर 1963, एक हिस्टोरिक दिन। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 1963 का दिन, पहली बार इंडिया की जमीन से एक रॉकेट उड़ा, नाइक अपाचे रॉकेट। आसमान को चीरते हुए वो ऊपर गया और ग्लोइंग सोडियम क्लाउड से रिलीज हुआ, जो पूरे केरला के आसमान में दिखा। लोग रुक गए ऊपर देखने लगे, हैरान, खुश और प्राउड। असेंबली भी रुक गई, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रुक गई। क्यों? ताकि सब बाहर जाकर हिस्ट्री देख सके। और ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से चर्च से, एक फिशिंग विलेज से और एक आइडिया से। एक इंसान जो सपना देख रहा था इस सब के पीछे, जिसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि एक गरीब देश भी सपने देख सकता है, एक नया देश भी स्पेस प्रोग्राम डिजर्व करता है। और हम सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, हम आसमान में चमकेंगे। सपने का स्केल बड़ा था, वो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा था, वो एक जनरेशन बना रहा था, एक माइंडसेट बना रहा था, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि हम कर सकते हैं। और फिर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो इंसान अपने सपनों का फ्यूचर देख नहीं पाया, सिर्फ 52 इयर्स की एज में वो चला गया, लेकिन उसने जो बीज बोया ना दोस्तों, वो आज भी ग्रो कर रहा है। लेगेसी जो रुकती नहीं, उसने इंस्पायर किया यंग साइंटिस्ट्स को, ड्रीमर्स को, और उनमें से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी जब इंडिया आसमान की तरफ देखता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। थुम्बा, आज की सबसे बड़ी बात, ये कहानी रॉकेट्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है सोच की। अगर उस वक्त लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते तो ये सब कभी नहीं होता, लेकिन किसी ने पॉसिबिलिटी देखी। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाती हूं, आपकी लाइफ में कोई चर्च है, कोई सिंपल सी जगह, कोई छोटा सा रिसोर्स जिसे आप इग्नोर कर देते हो या इग्नोर कर रहे हो? क्या पता वही आपका रॉकेट लैब हो। हम बोलते हैं, यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, परफेक्ट सेटअप नहीं है। और वहां लोग साइकिल पर रॉकेट ले जा रहे थे। दोस्तों, बड़े सपने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और कभी कभी एक छोटा सा चर्च भी स्पेस लैब बन सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक के लिए सपने जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ देखना मत, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखना। क्योंकि याद रखिए, आसमान उनका होता है जो जमीन से उठने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

सामने रख देता है एक छोटी सी बात जो सब बदल देती है। ओनर किताब देखता है, हैरान हो जाता है, ये तो बहुत रेयर बुक है, बहुत डिमांड है इसकी, कितने में बेचोगे? लड़का कहता है 150 रुपये। ओनर कहता है ये तो कम से कम 350 की है। फिर वो किताब को खोलता है और उसे वो हैंड रिटन नोट दिखता है। वो पूछता है ये अवार्ड मिला था तुम्हें, फिर बेच क्यों रहे हो? सच सामने आता है। लड़का अपनी कहानी बताता है, फ्लड, घर, पिताजी, जिम्मेदारियां। ओनर चुप हो जाता है, किताब बंद करता है और एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और काउंटर पे रखता है, 96 रुपीज, और वो लड़के की तरफ उसे स्लाइड कर देता है। और फिर आती है असली कहानी। ओनर कहता है ये लो, इससे तुम्हारा ट्रैवल हो जाएगा, थोड़ा खाना भी मिल जाएगा, घर जाओ, अपने परिवार के पास रहो, ये मुश्किलें गुजर जाएंगी। और फिर एक लाइन कहता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है, लेकिन ये किताब, इसमें जो नॉलेज है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, मैं इसे यहां सेफ रखूंगा, ये तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, जब वापस आओ ले जाना, बस 96 रुपये वापस कर देना। एक छोटी सी मदद पर एक बड़ा असर, ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये एम्पथी थी और ये बिलीफ था कि ये लड़का वापस आएगा और अपना सपना पूरा करेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, वो लड़का घर गया, अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और फिर वापस आया, पैसे वापस किए और अपनी किताब ले गया। वो लड़का कौन था? वो लड़का बाद में बना APJ अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक प्रेसिडेंट और सबसे इम्पोर्टेंट, एक इंसान। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी लाइफ की हर अचीवमेंट ऐसे ही छोटे छोटे काइंडनेस पर बेस्ड है, ज्यादातर अननोन लोगों से मिली हुई काइंडनेस। आज का सवाल, जी हाँ, आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ एक सवाल। हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स, लेकिन कभी कभी किसी और के लिए 96 रुपये बन सकते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी हेल्प, किसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी एक काइंडनेस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी कहानी। अगली कहानी तक के लिए, अगर मौका मिले तो किसी के लिए 96 रुपीज बन जाना, क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक इंसान बनना काफी होता है। धन्यवाद।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी।

देशभक्ति का जज्बा या जिम्मेदारी। स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी दिल से है, थोड़ी सोचने वाली है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं ना, वही हमें ग्रो भी करवाती हैं। तो चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक जज्बा है या एक जिम्मेदारी भी है? क्या देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में होती है या वो छोटी छोटे एक्शंस में होती है? एक वक्त था दोस्तों, जब हमारी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो सवाल पूछती थी और आपके साथ वो सवाल जीता था, आपके जहन में जिंदा रहता था और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खटखटाता था, ताकि आप उस पे एक्ट कर सकें, जिम्मेदार बन सकें। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, ऐसे सवाल जिनको इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन सामना करना जरूरी होता है। उस वक्त की देशभक्ति थोड़ी अलग थी, ना वो चिल्लाती थी ना वो प्रूफ करती थी, वो बस दिखाती थी और पूछती थी। एक फिल्म आई थी स्वदेश, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो उस फिल्म के थ्रू आई थी। एक सिंपल कहानी, एक आदमी जो बाहर सेटल था, कंफर्टेबल लाइफ, एसी रूम, क्लीन रोड्स, सब कुछ परफेक्ट। फिर एक दिन वो अपने देश वापस आता है और जो वो देखता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है। गांव में बिजली नहीं, पानी की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरियां नहीं है, लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस चीज, लोग इस सब के आदी हो चुके हैं। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लगना भी बंद हो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है किसी गलत चीज को न्यू नॉर्मल मान लेने की। एक मिरर जो हम सबको दिखाया गया। स्वदेश की कहानी किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सिस्टम को ना लोगों को, ये बस एक मिरर रखती है और कहती है, देखो ये है रियलिटी और तुम बताओ तुम क्या करोगे। दोस्तों, ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत पर्सनल है और बहुत जिम्मेदारी मांगता है। हम अक्सर देशभक्ति को एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद देशभक्ति एक एक्शन भी हो सकती है। नारे लगाना आसान है, लेकिन रोड पर कचरा न फेंकना बहुत मुश्किल है। दूसरे देश की बुराई करना आसान है, लेकिन अपने देश को अपने हाथों से बेटर बनाना एफर्ट लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस लाती है। सोचिए, अगर एक गांव में बिजली नहीं है और सिर्फ कोई एक इंसान कंप्लेन ना करे बल्कि सोल्यूशन ढूंढे, तो क्या होगा? एक घर रोशन होगा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। दोस्तों, चेंज कभी एक बार में नहीं आता, वो छोटी छोटी कोशिशों से ही आता है। और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल। हम सब के पास अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हम सबको ये सब करना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने ही लेवल पे, अपनी ही कैपेसिटी में कुछ तो। क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, देश हम सब से मिलके बनता है। जो बातें हम सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के डिविजन्स, अनटचेबिलिटीज और क्या क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों, जो बातें अनकंफर्टेबल होती हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी, बस चुप हो जाएंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देशभक्ति क्या है? लव फॉर योर कंट्री,
प्लस एंड माइंड यू अ वेरी बिग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट. सिर्फ प्यार काफी नहीं होता और सिर्फ कंप्लेंट उससे भी कुछ नहीं होता. दोनों के बीच एक्शन होना जरूरी है. हम सब बोलते हैं ये कंट्री कब सुधरेगी, लेकिन जब सिग्नल तोड़ते हैं तो बोलते हैं चलता है, मैं जल्दी में हूं, मुझे कहीं पहुंचना है वरना ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा शायद. हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं. दोस्तों, सिस्टम हम ही हैं. और आज की सबसे बड़ी बात, देशभक्ति लाउड नहीं होती, वो सटल होती है. वो स्लोगन्स में नहीं, चॉइसेस में होती है. रोज के छोटे डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में. एक सिंपल सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं. आज रात जब आप अकेले हो ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं. बड़ा आंसर जरूरी नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर जरूर दीजिएगा खुद को. दोस्तों, ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक अप्रोच की कहानी है, जहां देशभक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है. मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे आज की एक नई कहानी. अगली कहानी तक के लिए अपने देश से प्यार करिए, लेकिन सिर्फ फील मत करिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करिए. क्योंकि याद रखिए, देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है. मेरा भारत महान, और नीचे छोटे शब्दों में बनाना पड़ेगा. नमस्कार.

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत शॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

अच्छे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं।

जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: लुई पास्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: De Marseille, dans le sud de la France.
5: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया, भागो।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
8: चलो, मुझे ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
6: लुई पाश्चर
2: सर,
6: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
6: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
6: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
8: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ।
0: I am sure 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
9: सर सर ये टेलीग्राम।
0: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
9: क्या हुआ सर?
0: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
9: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
9: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
10: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
10: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
10: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
10: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़।

पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट इनसेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज,
1: विज्ञान गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: बाबा आमटी

कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंद वन। आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन
पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से

250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब है बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। ये प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटे के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंदवन सचमुच आनंद।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं।

वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
4: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
3: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
4: हाँ, अब बन गई रेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
4: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
5: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
3: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
5: चलो। रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
3: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
5: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
3: अच्छा
5: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
4: दादाजी, मैंने देखी है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
5: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
3: अरे वाह,
5: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
3: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
5: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
6: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
5: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
6: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
5: बैठो बैठो, जल्दी खड़ो, जल्दी बैठो बैठो बैठो, बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
6: उतरो उतरो।
4: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
5: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
1: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफार्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।

0: रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
2: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
2: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
1: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
2: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
0: चुक चुक चुक चुक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे। और कार्यक्रम लेकर आए हैं हम, कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, उन मंटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब अपने हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं, यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, चूंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसान साथी चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें, क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर लें, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विषय विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषक से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषक की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफ़ी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें, तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, कि आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उस उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है, इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रान वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद एक हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: मैया की जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें, बीज बहुत घना ना बोएं, इस बात का ध्यान रखें। और जब बुआई कर लेते हैं आप, तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे। अब फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और मित्रों कैसे हैं, आपने जानकारी पाकर हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जरूर अपने खेतों में नर्सरी लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पथरीला इलाका है तो हमारे किसान साथी सब्जी भी लगा सकते हैं, साथ साथ में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी थोड़ा देना चाहते हैं, टमाटर से जुड़ी है, क्योंकि टमाटर उगाने के लिए वायु परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए, पुष्पन एवं फल बनने के लिए भारी बारिश बादल नुकसानदायक है क्योंकि यह फूलों और फलों को गिरने का कारण बनता है, ये पौधे पाला और अधिक नमी के सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं, फल उगने बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं, क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही है तो ऐसे में किसान साथी कर सकते हैं अपनी अपनी खेती को लगा सकते हैं नर्सरी लगा सकते हैं। तापमान की अगर बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है, यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है, टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है, टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता आमतौर पर सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है,
2: उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का साथ ड्रिप सिंचाई की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं उस पर भी अपन ध्यान केंद्रित कराएंगे। फसल में पानी की आवश्यकता 600 से 1500 मिलीलीटर वर्षा के बराबर होनी चाहिए और उचित मिट्टी की अगर बात करें तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आवश्यक स्तर 6.0 से 7.5। यदि पीएच आपका 6.0 है तो चूना डालें, यदि पीएच 7.5 है तो जिप्सम डालें उसमें। तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में आइए एक और गीत को सुन लेते हैं और इसके बाद हम किसान साथियों के लिए बताएंगे कि इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट हमारे किसान साथी कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM। आपका रेडियो अपनी बात है।

रेडियो टांटिया भी 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, भीली गीत का आनंद लिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे किसान साथियों की खेत खाली है तो अभी क्या कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, पशु मल, मूत्र एवं पत्तियों के डी कम्पोस्ट की विशेष प्रजाति के केचुआ के सहयोग द्वारा कम्पोस्ट में बदला जाता है। यह प्रतिक्रिया पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ किसानों के लिए अति उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से सुधार होता है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाऊ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुआ होते हैं। प्राय 1 केचुआ 2 से 3 कोकीन प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कोकीन से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुआ निकलते हैं। 1 केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुआ पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह तक प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन 1 केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों में से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट 60 से 70 दिनों में तैयार कर देते हैं। अब इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले केचुआ का चयन करना चाहिए। केचुआ का चयन कैसे होता है? वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र हो, प्राकृतिक तापमान के उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो व कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए आइसिनिया, फीडिया और यूडिलियस यूजिने व पेरोसिक्स उन्नाव जनपद के आसपास के क्षेत्रों में आइसिनिया फीडिया वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट योग्य पदार्थ जो रहते हैं, इस प्रक्रिया के लिए समस्त प्रकार के जैव क्षतिशील कार्बनिक पदार्थ जैसे गाय, भैंस, भेड़, सुअर व मुर्गियों आदि का मल, बायोगैस सलरी, शहरी कूड़ा, प्रायोगिक खाद्यान्न व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, आपको पता होगा फसल अवशेष अभी है, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसमें चुनाव कैसे करें स्थान का? ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां छप्पर की छाया या टीन का सेट, कंक्रीट छत का प्रबंधन करने की सुविधा हो, साथ ही तापमान, वर्षा, अन्य शत्रु जैसे कि चूहे, छिपकली, सांप, नेवला और पंछियां जो रहती हैं उसका प्रबंधन तय हो। बेड बनाना यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के कई तरीके रहते हैं। किसान अपनी सुविधा एवं व्यवस्था के अनुसार उचित विधि का चुनाव कर सकता है। जैसे कि ज्यादातर किसान मुख्यतः एक विधि से बेड बनाते हैं जिसमें बेड बनाने के लिए 10 फीट लंबाई तथा 3 से 4 फीट चौड़ाई और 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई के आकार की पक्की ईंटों का बनाना चाहिए जिसे सीमेंट से जोड़ा जा सकता है और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपोस्टिंग किसी भी प्रकार के पात्र जैसे मिट्टी या चीनी के बर्तन, बांस बेसिन, लकड़ी बक्से, सीमेंट टैंक आदि में किया जा सकता है। गड्ढों व बेड की लंबाई चौड़ाई उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्धारित करें जिसकी गहराई व ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक ना रखें। कंपोस्टिंग के लिए सबसे नीचे सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे यानी घास फूस, केले के पत्ते, नारियल के पत्ते, फसलों के डंठल की तह बिछाएं। इसके बाद इसे
तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं और पानी का छिड़काव 1000 से 1500 केंचुआ प्रति मीटर की दर से छोड़ दें। इसके ऊपर सड़ा गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिसके खाद बनाना चाहते हैं आंशिक रूप से सड़ाने के बाद डालें और इसे टाट व बोरी से ढक सकें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें जहां पानी का ना ठहरता हो। बेड की भराई करना प्रथम स्तर रहता है कि बने हुए बेड में सबसे नीचे 3 इंच मोटी ईंटों की टूटे हुए टुकड़ों से या कंक्रीट की तली बनानी चाहिए और उसका 1 से 2 इंच ढाल रखना चाहिए। उसमें एक जिस और ढाल है 2 से 3 इंच चौड़ा पाइप लगाना चाहिए जिस तरफ ढाल है। द्वितीय स्तर रहता है जल्दी ना सड़ने वाले पदार्थ जैसे ज्वार बाजरा मक्का सरसों और सूखी भूसी या प्यार जो रहता है 4 से 5 इंच मोटी बिछा देना चाहिए। 7 दिन पुराने गौमूत्र से अच्छे से भिगा देना चाहिए। तीसरा स्तर रहता है कि द्वितीय स्तर के ऊपर 3 इंच मोटी सड़ी हुई गोबर की परत या गोबर गैस की निकली सलरी बिछाकर पानी में भिगो देना चाहिए। चौथा स्तर रहता है शेष बसी जगह में पशुओं का गोबर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किसान अगर चाहे तो सब्जी के छिलके भूसा घास पशुओं का बचा हुआ चारा आदि का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 15 दिन पहले अधसड़ा हो जिसे केंचुआ खा सके आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बेड केंचुआ पर कैसे डालते हैं। बर्मी कंपोस्ट पिट के लिए एक विशेष प्रकार की केंचुए जिसे रेड बर्म कहते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोडिया है इस पर प्रयोग करने अपने बने बेड में 10, 4 और 2.5 पेट भरे गोबर में 5 किलोग्राम केंचुआ को ऊपरी सतह पर फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद केंचुआ सभी पेट में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी सतह पर जूट से बने बोरे का प्रयोग करते हैं और पेम्पटेचर

और बर्मी में उपयुक्त पदार्थ के गलने के आधार पर खाद को बाहर लेना चाहिए। निकालते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं और जिससे केंचुआ अपने आप नीचे चले जाते हैं। कंपोस्ट एकीकरण जो साधारणतः 60 से 70 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें जिसमें केंचुआ नीचे चले जाए और कंपोस्ट एकत्रित कर छान कर केंचुओं अलग कर दें और छाया में सुखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। उपयोग एवं उत्पादन कैसे होता, तैयार खाद को कहां उपयोग करना चाहिए इसकी योजना पहले बनाना चाहिए कि आप दलहनी की फसल अगर बोते हैं तो 2 टन बुवाई से पूर्व उसमें डाल देना चाहिए। तिलहनी की फसल में 3 टन रहता है बुवाई से पूर्व। मसाला व सब्जी अगर की फसल लगाते हैं तो 4 टन बुवाई से पूर्व। फूल वाली फसल लगाते हैं तो 5 टन बुवाई से पूर्व। फलदार पौधों का रोपण के समय 5 किलोग्राम या वृक्ष में अपन डालते हैं। गमलों में मिट्टी के भार के पर 10%। लॉन में अगर डालते हैं 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट बनाने की विशेष विधि को हमने जाना। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी के रंग आपकी सेहत के संग के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनीत लोकवानी साहब हैं, जो एक सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट यानी कि रक्त रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर सुनीत लोकवानी HCG कैंसर सेंटर इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां पर मरीजों का पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर सुनीत से करेंगे। डॉक्टर सुनीत आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई वुड सिंसियरली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना एक परिचय दें जिससे कि हमारे सुनने वाले आपको जान पाए पहचान पाए।
1: नमस्ते गोल साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके रेडियो प्रोग्राम पे बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके इस आइडिया का पार्ट बन सका कि अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। और मेरा काफी इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। मैं रक्त रोग एवं कर्क रोग विशेषज्ञ हूँ, HCG कैंसर सेंटर इंदौर में कार्यरत हूँ। और आई प्राइमरीली अटेंड या मैं ज्यादातर रक्त रोगों में, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैंसरस या नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस जैसे कि थैलेसीमिया या सिकल सेल, और कैंसरस जैसे कि ब्लड कैंसरस होते हैं, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा। और इसके अलावा जितने भी कर्क रोग होते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, जिनमें पार्ट रहता है, जिनमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और ऐसी विद्याओं से इलाज होता है, उसमें मेरी डिग्री है और वही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मेरी विशेषज्ञता पेन पैलेटिव केयर और ICU एक्सपर्टीज भी है, और वही प्रैक्टिस मैं यहाँ HCG में कर रहा हूँ। अगर आप में से कभी किसी को मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तो प्लीज याद रखें।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना परिपक्व और इतना डिटेल्ड और इतना साफ सुथरा सा इंट्रोडक्शन हमारे सुनने वालों के लिए सचमुच बहुत काम का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू
0: डॉक्टर साहब। इस बातचीत को शुरू करते हुए एक बिल्कुल ले मैन के लिए, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति के लिए हम अगर बात करें, मैं मानता हूं दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, डिजिटलाइज हो चुकी है, गूगल बाबा बहुत लोगों को बताते रहते हैं चीजें, लेकिन कैंसर के बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। लोग आपस में बात करके बहुत समझदार बन जाते हैं, लेकिन दरअसल किसी विशेषज्ञ से बात करके ही सही जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ही बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब की, क्योंकि आप हेमेटोलॉजिस्ट हैं, रक्त रोग विशेषज्ञ हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। पुराने जमाने से सब लोग फिल्मों में देखते आए कि साहब ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर मतलब खत्म, सब कुछ ओवर, मतलब बड़ा उसको मेलोड्रामेटिक बना के और बड़ा ही उसका इमोशनल करके रोना धोना शुरू हो जाता था। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा ब्लड कैंसर को समझाएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ब्लड कैंसर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान बीमारी है जिसको बड़े आराम से ट्रीट किया जा सकता है।
1: बहुत सही, मैं ये कहने वाला था कि आपके प्रश्न से ही आपका उत्तर उठाते हैं। पुराने जमाने में जैसे कहते थे तो उसको पुराने जमाने में ही रहने दीजिए, उसको वहां से नहीं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आज से 60-70 साल पहले ब्लड कैंसर लाइलाज होता था
0: जी।
1: आज के जमाने में मैं अगर आम भाषा में बात करूं तो कई प्रकार के ब्लड कैंसर हैं, ल्यूकेमिया, और सबसे काम कॉमन जो कहा जाता है वो ल्यूकेमिया होता है, WBCs का जो सेल्स का होता है
0: जी।
1: दूसरे जो होते हैं लिम्फोमा और माइलोमा, आम भाषा में उनको भी ब्लड कैंसर की संज्ञा दी जाती है, पर वो काफी हद तक मैनेजेबल है और इनफैक्ट क्योरेबल भी है
0: जी।
1: लेकिन जब ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया में चार कॉमन प्रकार होते हैं, जिसमें से दो को अक्यूट की संज्ञा दी गई है, दो को क्रॉनिक की संज्ञा दी गई है
0: जी।
1: जो क्रॉनिक ल्यूकेमियाज होते हैं उनमें एक में आपको सिर्फ एक दवाई लेनी है, बीपी डायबिटीज जैसी, पूरी उम्र आपका इलाज होता रहेगा, कुछ नहीं करना।
0: अरे वाह।
1: दूसरा जो क्रॉनिक ब्लड कैंसर है उसमें कई बार तो हम दवा भी शुरू नहीं करते, सिर्फ आपको 2 महीने में 1 महीने में एक ब्लड टेस्ट करके हमें बताना होता, तो वो इतना अच्छे तरीके से मैनेज होता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: दो जो अक्यूट ब्लड कैंसर हैं दो
0: जी,
1: उसमें से एक जो है वो थोड़ा जटिल होता है और उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें 50-50 चांसेस रहते हैं
0: जी।
1: जीवन मरण के इलाज के बावजूद
0: जी।

0: और एक जो होता है ALL, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो अक्सर 15 साल से छोटे बच्चों में आता है, और अगर पूरा इलाज लिया जाए तो 80% बच्चे पूरी तरह ठीक होते हैं।
1: क्या
0: इलाज
1: बात है,
0: लंबा चलता है उसका, तो 75% ऑफ ब्लड कैंसर जिनसे डर लगता था, टेक्निकली उनका इलाज काफी हद तक संभव है। इनफैक्ट कुछ तो पूरी तरह क्योरेबल की श्रेणी में आ चुके हैं।
1: बहुत बढ़िया
0: तो
1: डॉक्टर साहब।
0: आपका जो स्टेटमेंट था सर, आई रीइटरेटेड, या मैं उसको दोबारा दोहराता हूं,
1: जी
0: ब्लड कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, जितना भी मुझे समझ में आया था, जितना कुछ मैंने पढ़ा, आपके जैसे प्रबुद्ध डॉक्टर से जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे ये लगा शायद शायद पूरे कैंसर ट्रीटमेंट में, चाहे हम सॉलिड ट्यूमर्स की बात कर लें, हेमेटोलॉजी की बात कर लें, मुझे लगता है हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड कैंसर फिर भी बहुत आराम से अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू सॉलिड ट्यूमर ट्रीटमेंट्स, वहां थोड़ी
0: डिपेंड
1: जल्द
0: करता है आपको हुआ कौन सा
1: जी हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही
0: जरूर।
1: कही आपने।
0: अच्छा, दूसरा मतलब मैं आपको, सॉरी मैं आपकी बात
1: नहीं नहीं
0: काटना
1: प्लीज
0: चाहूंगा
1: प्लीज
0: यहाँ।
1: प्लीज
0: जिस व्यक्ति पे बीतती है उसके लिए बुखार भी दुखदाई होता है।
1: बिल्कुल सही कहा
0: तो
1: साहब।
0: अगर हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, तो मैं मानता हूं कि इन बीमारियों का इलाज पूरी तरह संभव है, नो डाउट अबाउट इट। बट कैंसर शब्द से जो आज भी हम कांपते और डरते हैं, और उसको एक हवा मान के चलते हैं कि साहब ये किसी जमाने में जो कोढ़ को संज्ञा दी जाती थी, आजकल कैंसर को संज्ञा दी जाती है। क्योंकि कुछ भी कर लें, लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि ये जीवन को विराम लगाने की क्षमता रखता है अपने आप। तो वो एक डर जो है लोगों के मन से निकालना ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपने कहा, ब्लड कैंसर डेफिनेटली ट्रीट करना आसान है, पर इसके इलाज लंबे चलते हैं।
1: बिल्कुल ठीक है दोस्तों,
0: जी
1: आप इस बात पर गौर कीजिएगा डॉक्टर सुनीत क्या बता रहे हैं। आप चाहिए तो इस प्रोग्राम को बार बार सुनिए, समझिए इस बात को कि इसके ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया लंबे जरूर चलते हैं लेकिन ऑलमोस्ट क्योरेबल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। तो मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज घबराना बंद कीजिए, कैंसर कोई हवा नहीं रह गया, अब कैंसर के बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रबुद्ध एक्सपर्ट्स डॉक्टर सुनीत जैसे अब हमारे पास हैं जो हमारी पूरी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कोई बिल्कुल अगेन साधारण व्यक्ति, भला वो कैसे पहचाने, उसे कैसे वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि शायद उसे ब्लड कैंसर या सॉलिड ट्यूमर कैंसर कुछ भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
0: सर, कैंसर की आप ही की तरह किसी दिन एक मैं इंटरनेट के थ्रू एक रेडियो प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था।
1: जी
0: उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी सी बात खत्म करते करते पूछी थी कि साहब आप क्या चाहते हैं, बदलाव कैंसर में क्या है। तो मेरे साथ मेरे ही शरीर के एक मेरे मित्र डॉक्टर साहब थे, हम दोनों साथ में इंटरव्यू दे रहे थे। हमने साथ में एक ही सांस में एक बात कही कि हम चाहते हैं कि कैंसर दर्द के साथ आए।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि हम मानवीय लोग हमेशा दर्द को रिस्पॉन्ड करते हैं, बिना दर्द की किसी चीज को हम उतनी संज्ञा नहीं देते हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
1: जी।
0: और कैंसर के जितने भी सिम्टम्स या जितने भी इसके प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी इसके कारण आती हैं, वो बहुत टिमिड या छोटी होती हैं। और कई बार जैसे लंबे समय तक वजन का कम होते जाना बिना किसी कारण से, बहुत समय तक भूख न लगना किसी कारण से, बुखार का रोज छोटे छोटे दर में आना जिसका कोई कारण न मिलना, तो ये चीजें जो हैं ये बेसिकली कैंसर का सिम्टम होती है। पर इनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। अच्छा, औसतन हम जो जिस तरह से हम भारतीय हैं, हम किसी भी चीज को जब तक कि वो 2 महीने की ना हो जाए उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको उतना जो जरूरत से देखना, जो सीरियसनेस से देखना चाहिए वैसे नहीं देखते। तो कोई भी आपको तकलीफ है, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और वो कभी भी 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा तक जा रही है, तो आपको उसे गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंपल खांसी हो, वजन का घटना हो अपने आप, या भूख ना लगना हो अपने आप, कोई भी चीज जो लंबे समय में परिवर्तित होती जा रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देके उसको वर्कअप करें, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी कैंसर के सिम्टम को पकड़ने का।
1: जी
0: इसके अलावा जिस अंग में कैंसर होगा उसकी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है तो यूरिन में कभी खून आ सकता है, कभी यूरिन निकलने में प्रॉब्लम आती है, वहां दर्द होता है जब यूरिन होती है, तो जिस अंग में आएगा वहां की प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही।
1: जी।
0: और जहां तक ब्लड कैंसर का सवाल है, जब ये आते हैं तो ये एक्सट्रीम वीकनेस कमजोरी के साथ आते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम इनका इनकी कमजोरी रहती है कि शरीर को शिथिल कर देते हैं।
1: ओके,
0: इस बात को समझो।
1: बहुत बढ़िया दोस्तों, अगेन डॉक्टर साहब की कही हुई बात को मैं बहुत ही छोटे से मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर ब्लड कैंसर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कमजोरी आएगी, बहुत जबरदस्त कमजोरी आएगी, उसे बिल्कुल ना टालें, तुरंत तुरंत या तो अपने जनरल फिजिशियन से जिनसे आप मिल रहे हैं उनसे मिले, या फिर आप डॉक्टर सुनीत को भी मिल सकते हैं जाके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बतलाई कि कोई भी परेशानी जैसे वजन कम होना, भूख लगना, बुखार का आना, खांसी होना, अगर 2 महीने या 15-20 दिन से भी ऊपर जा रहा है तो उसे सीरियसली तुरंत ले और तुरंत चले जाए, क्योंकि अगर वहीं पर उसको रोक दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आजकल बिल्कुल आजकल के वक्त में ये हो रहा है और ये पूरे चारों तरफ हो रहा है, पूरी इंडिया में हो रहा है कि वायरल चल रहा है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार का जो वायरस है वो कुछ ज्यादा ही बदतमीज साबित हो रहा है, 2 से 3 बार रिलैप्स हो रहा है, मुझे भी हो चुका है, 2 बार तो रिलैप्स हो चुका है, और खांसी जो है वो 15-15 दिन से ऊपर जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, वो रिलैप्स हो रही है, तो क्या हम इसे भी इस तरीके के लक्षणों में गिनना चाहिए हमें?
0: देखिए, वायरस जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में जब हमें वायरस पढ़ने मिलता है, सेकेंड ईयर में जब माइक्रोबायोलॉजी की किताबों में वायरस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई जाती है जिसे कहा जाता है पैराडाइम शिफ्ट एंड पैराडाइम ड्रिफ्ट। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं
1: जी।
0: शिफ्ट मतलब किसी वायरस ने अपना एंटीजन जल्दी जल्दी बदला, उसे शिफ्ट कहा गया। साल भर भाई, 1 साल पहले H1N1 का वेरियंट ऐसा था, 1 साल बाद H1N1 का वेरियंट थोड़ा बदल गया है। और दूसरा होता है पैराडाइम ड्रिफ्ट, जो कि हर डिकेड में एक वायरस अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित कर लेता है और आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो उस पहले वाले को पहचानती थी, नए वाले को नहीं पहचानती। और नया वाला जब आता है, इन्फेक्ट करता है, तो इट स्टेज फॉर लॉन्ग एंड वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर इट। और कोविड के बाद से जितने भी वायरस आप देखेंगे वो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस
1: लेकर आए हैं,
0: क्या कहेंगे इसे, मैं मतलब हिंदी में उसका एक शब्द,
1: प्रतिरोधक क्षमता, मतलब ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता लेके आए,
0: ज्यादा प्रतिरोध के साथ आ रहे हैं, ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता के साथ या ज्यादा उग्र तरीके से आ रहे हैं, जैसे भी उसको आप समझे, तो उसके कारण उसके सिम्टम्स भी लंबे चल रहे हैं।
1: ओके,
0: तो ये एक पैराडाइम ड्रिफ्ट और पैराडाइम शिफ्ट फिनोमेनाज हैं जो हर वायरस में होते हैं और उस समय अनुसार होते हैं, और फिर उसके बाद उनको समझा जाता है और पढ़ा जाता है और फिर हम उन पर महारत हासिल करते हैं।
1: तो इस लक्षण को जो नॉर्मल रूटीन आज चल रहा है कि खांसी बड़ी लंबी लंबी जा रही है, कभी वो डाउन हो जाती है फिर आ जाती है, तो क्या इसे भी हम सीरियसली लें जैसा मैंने आपसे पूछा था?
0: सर, लेना तो बीमारी शरीर में हर किसी चीज को सीरियसली चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
1: तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या टेस्ट करा लें, एक मिनट जस्ट इन केस,
0: अगर आपको खांसी है तो आप चेस्ट का एक्सरे कराएं, लोकल फिजिशियन को दिखाएं, वो एक बार एग्जामिन भी करेंगे आपको। अगर आपको खांसी ना हो के सर्दी है लंबे समय तक, तो भी आप लोकल फिजिशियन को दिखाएं, वो भी उसके लिए एक्सरे कराएंगे, या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है उन्हें तो वो कराएंगे, नेजल एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है तो वो कराएंगे। तो वो फिजिशियन अपने हिसाब से आपको एग्जामिन करके फिर एक डिसीजन लेंगे कि क्या बेस्ट है आपके लिए। तो जो बेस्ट होगा आपके लिए उस हिसाब से उसकी जांच की जाएगी और फिर उसे पकड़ा जाएगा कि वो क्या है एग्जैक्टली।
1: ओके, तो मेरे सुनने वाले दोस्तों इस बात पे गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, आसान है। अपने जनरल फिजिशियन के पास जाइए, सिंपल एक चेस्ट एक्सरे, या अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो सीटी स्कैन, उससे काफी हद तक मालूम पड़ जाएगा कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से आप डॉक्टर सुनीत से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम के बाद डॉक्टर साहब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहां छोड़ देंगे, उनकी वेबसाइट, उनका मेल आईडी, आप उन पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जानकारी के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो, वैसे यूं आपने जनरलाइज्ड आंसर दे दिया है, फिर भी किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, कैंसर विशेषज्ञ के पास जाने से पहले हम क्या क्या जांचें करा लें, क्या क्या तैयारियां करके पहुंचे तो आपका काम आसान हो जाए थोड़ा बहुत?
0: आप किसी भी मेडिसिन फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो एक बेसिक सेट ऑफ जांचें आपसे कराएंगे ही कराएंगे। अगर उनमें कुछ निकल के आ रहा है फिर आप उनके थ्रू हमारे पास आएंगे, या फिर उनमें कुछ तकलीफ होगी तो फिजिशियन आपको गाइड करेंगे कि आप कैंसर के किसी फिजिशियन से या सर्जन से मिलिए। तो बेसिकली जब भी फिजिशियन के पास जाएंगे, जिस भी जगह की प्रॉब्लम होगी या ज्यादा कुछ निकल रहा होगा, तो बेसिक आपकी जांचें कराएंगे, जिस पैनल में ब्लड टेस्ट होंगे, सोनोग्राफी होगी, एक्सरे होंगे, जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन या एमआरआई भी होंगे। तो उसके बाद जब कुछ निकल के आएगा तो आपका एक रेफरल टुवर्ड्स द सुपर स्पेशलिटी ऑफ ऑन्कोलॉजी या सुपर स्पेशलिटी ऑफ कैंसर की तरफ होगा।
1: Okay.
0: पर अगर आपको मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहब नहीं मुझे डर लग रहा है, कैंसर की तकलीफ लग रही है, तो आप डायरेक्टली भी किसी कैंसर फिजिशियन से मिल सकते हैं, अपने मन की शंका निकाल सकते हैं, मिटा सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया,
0: ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब। जस्ट टू कीप दिस एंटायर कन्वर्सेशन अलाइव, मैं यहाँ पर मेरा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले मुझे मैं यहाँ भीमताल में था, मैं आज पर जयपुर से आया था, तो मुझे जाहिर से बात है यहाँ की फंगल इन्फेक्शन या यहाँ की ठंड के लिए मैं एक्लेमेटाइज नहीं था, मतलब यहाँ पर मैं बैठा नहीं था, तो मुझे चेस्ट कंजेशन होना शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगा चेस्ट में दबाव हो रहा है। 2-3 महीने गुजरे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मैंने एक्सरे वगैरह भी करा लिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह जो भी मेरे थोड़े बहुत जानकार थे उन लोगों को शेयर किया, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था, सारे टेस्ट करा लिए। इवेंचुअली एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा इतना भी डरने की, अब आई वाज स्केयर्ड डॉक्टर साहब, मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे को लंग्स का कुछ इश्यू हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब देखो जो भी है वो एक बार क्लैरिटी तो लेनी पड़ेगी, आप इसे बचते हुए घूम नहीं सकते सर पकड़े हुए, तो बेहतर है जाइए एक सीटी स्कैन करा लीजिए, चेस्ट सीटी करा लीजिए, जो भी होगा सामने आ जाएगा।
0: जी साहब बिल्कुल।
1: और ठीक है साहब, थर थर कांपते हुए डरते हुए मैंने जाके वो सीटी स्कैन करा लिया और कुछ नहीं आया, नथिंग। तो दोस्तों उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, उन डॉक्टर साहब के प्रति भी मैं बहुत धन्यवाद पेश करता रहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे हिम्मत बंधाई कि कम से कम मैं जाऊं तो सही। मुझे ऐसा लगता है साधारण व्यक्ति बस यहीं डर कर आगे बढ़कर टेस्ट नहीं कराता और वहीं प्रॉब्लम हो जाती है।
0: मैं गोयल साहब इसमें 2 चीजें जोड़ूंगा आपकी,
1: प्लीज प्लीज
0: स्टोरी से मैं 2 शिक्षा लूंगा। पहली बात तो चीज उतनी सीरियस होती नहीं है जितनी हम उसे मन में मान लेते हैं।
1: करेक्ट।
0: ओवर थिंकिंग बेसिकली लीड्स टू नथिंग। दूसरा ये अच्छी बात है कि कुछ निकल के नहीं आया, कुछ निकल के अगर आता भी, गुड गॉड फॉरबिड, आता भी तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो उसका कुछ ना कुछ निदान तो निकालते हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और तीसरा ये कि किसी भी चीज की, किसी भी सिम्टम को आने के बाद डर बहुत स्वाभाविक सी चीज है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर देखेंगे क्या होता है वाले एटीट्यूड के साथ आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए, अब जब हम लोग ने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने की हिम्मत बांध ली, तो किस किस तरीके के इलाज अब हमारे पास मौजूद है?
0: प्राइमरीली देखा जाए मूलतः 3 प्रकार के कैंसर के इलाज होते हैं। एक होता है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की तरफ से इलाज देना। कीमोथेरेपी कुछ नहीं है, कैंसर को मारने के लिए ब्लड में मिलाकर, सलाइन में मिलाकर ब्लड में दी जाने वाली दवाओं को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इनका एक ब्लैंकेट टर्म है क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो नॉर्मल दवाओं से थोड़ी अलग होती हैं, बस कुछ नहीं। दूसरा है इम्यूनोथेरेपी जो कि इसी का एक एडवांस्ड वर्जन होता है, वो सिर्फ रिसेप्टर्स पे या पर्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं
1: जी।
0: तो ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंडर आते हैं और हेमेटोलॉजी में भी इनका प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा तरीका होता है सर्जरी, मतलब काट के निकालना या ऑपरेशन करना, वो एक बहुत ही सरल तरीका होता है बट जटिलता से निकालना पड़ता है क्योंकि कैंसर जैसी गठाने अपने आप में कहीं से भी अदरक सरी की ग्रो होती है, किधर भी जाती है, किधर भी एक्सटेंड कर सकती है, तो इट इज अ टफ साइंस टू ऑपरेट ऑन अ कैंसर पेशेंट। थर्ड इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन जिस तरह से लोग समझते हैं, लोगों मन में काफी भ्रांतियां हैं कि इसको करंट का बोला जाता है तो लोगों को करंट देते हैं, तो ऐसा कुछ करंट वरेंट नहीं दिया जाता है। सीटी मशीन के अंडर आप लेटते हैं, उससे तरंगे निकलती है, जो दिखती नहीं है वो तरंगे उसी हिस्से पे जाती है जहाँ कैंसर है और उतने हिस्से में जाके एब्जॉर्ब होके उसको किल करती है।
1: बहुत बढ़िया।
0: आपको कुछ नहीं होता है उसमें, हम जब लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, बोले डॉक्टर साहब वो बोलते हैं कि रेडिएशन करंट होता है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं, करंट हम तार वार नहीं लगा रहे हैं आपको, ये ऐसा कुछ नहीं किया जाता है।
1: जी
0: तो ये काफी भ्रांतियां वाली चीज है, जो छोटी छोटी चीजें नटानी पड़ती हैं।
1: बहुत बढ़िया दोस्तों, अगेन इस बात को गौर से सुनिए, समझिए। आज के वक्त में जब एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इलाज बहुत आसान है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कीमोथेरेपी होती है, जो दवाइयां हमें दी जाती हैं वो आराम से हमारे शरीर में, ब्लड में चलती हैं, और वो जहां जहां पर भी कैंसर है उसे खत्म करती हैं। दूसरा सर्जरी डॉक्टर साहब ने बताया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बड़ा ही ढंग से डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अदरक की तरह टेढ़ा मेढ़ा होके बढ़ जाता है, तो उसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और तीसरा रेडियोथेरेपी, जिसमें कोई करंट वगैरह नहीं है। प्लीज इस कंफ्यूजन को, इस गलतफहमी को, इस भ्रांति को हटाइए कि करंट वरंट होता है। बिल्कुल जहां पर कैंसर है वहां पर फोकस करके एक्सरे की तरह से रेडिएशन दिया जाता है। बहुत बढ़िया। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब। सभी लोगों का फिर से मानना होता है, आपस में बात करते हैं और कुछ भी पका लेते हैं कि साहब ये जो कीमोथेरेपी होती है ये बड़ी जबरदस्त साइड इफेक्ट के साथ आती है, जला देती है शरीर को, फूंक देती है शरीर को। ये बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है लोगों के दिमाग में, उसका क्या बारे में बताइए।
0: मैं सर आपको समझाता हूँ क्या होता है। बेसिकली कैंसर कुछ नहीं है, तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं, तेजी से बढ़ने वाले सेल हैं। हमारी बॉडी में ना नॉर्मली भी तेजी से बढ़ने वाली चीजें होती हैं, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आंत की लाइनिंग वाले सेल्स, आपके रक्त में बहने वाले सेल्स जो ब्लड के सेल्स हैं, ये सब तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से मरते हैं। तो जब कोई भी चीज, जैसे हम कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी बेसिकली हर तेजी से बढ़ने वाली कोशिका को असर करती है, तो वो एबनॉर्मल कैंसर के सेल को असर करते करते नॉर्मल चीजों को भी असर करती है। तो आप देखेंगे भाई, लोगों के बाल भी थोड़े चले जाते हैं, त्वचा थोड़ी काली पड़ जाती है, आपका खाने पीने की जो हैबिट्स रहती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो आपका वजन गिरता है थोड़ा सा। और ये सब चीजें होने के कारण लोग कीमो को मतलब बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। कीमो देते समय कुछ नहीं होता है, कीमो लगते समय आपको कुछ नहीं होता है, पर जब इन दवाइयों का असर आता है तो कमजोरी जरूर आती है, क्योंकि आपकी बॉडी में डेली प्रोटीन बनते टूटते रहते हैं, जो आपकी एनर्जी का स्रोत होते हैं, ये उनपे भी असर जाता है, तो कमजोरी थोड़ी मात्रा में जरूर आती है। वो ऐसी रहती है कि आप अपने दिनचर्या के कार्य, अपने बारे में, उठना बैठना, नहाना धोना, कोना खाना पीना बड़े आराम से करते हैं, पर जब आप कोई मेहनत वाला कार्य करने जाएंगे तो आपको थकान बहुत ज्यादा मात्रा में महसूस होगी, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं।
1: तैयार नहीं है।
0: तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट है, जिसको पता नहीं लोग घुमा फिरा के तोड़ के अपने हिसाब से गर्म मसाले का लाल मिर्च बना के पता नहीं क्या बताते हैं। तो दिस
1: आपने
0: इज हाउ इट हैपेंस।
1: बिल्कुल
0: एंड
1: बिल्कुल
0: ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमारे यहाँ कीमो लेने के लिए वी हैव बिजनेसमैन, वी हैव आईटी प्रोफेशनल्स, वी हैव फार्मर्स, हमारे यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, कृषि से, बिजनेस से, आईटी सेक्टर से, लेते हैं और काम पे चले जाते हैं, काम करते हैं अपना।
1: भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब।
0: तो आज आज के जमाने में वैसा नहीं है जैसा पहले था। पहले कीमो डाल के फिर अनअटेंडेड किया जाता था, आजकल हर साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए कीमो दी जाती है,
1: जी
0: और आपको जब कीमो चढ़ाई जाती है तो वो आपके शरीर के अनुपात में चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक ब्लैंकेट डोज है वो सबको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लोगों की मान्यता धारणा ऐसी रहती है कि भैया ये कीमो है ये ब्लैंकेट जाती है बिल्कुल एकदम एक तरीके से, ऐसा नहीं होता। आपके शरीर के वजन, आपकी हाइट के हिसाब से उसका डोज निर्धारित किया जाता है।
1: जी
0: तो ये भी बात एक समझने की है। लोग कई बार मन में ऐसी भ्रांतियां पाल के बैठते हैं, अच्छा शरीर में जितने अंग होते हैं, जितने सेल्स होते हैं, 800 प्रकार के कैंसर होते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि साहब हर चीज का इलाज एक ही है। वो
1: अच्छा
0: भी एक धारणा है जिसे सुधारना जरूरी है।
1: जी
0: हर कैंसर का इलाज अलग प्रकार से, अलग तरीके से होता है।
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधी सी बात है दोस्तों। इस बात को भी अपने दिमाग में ठीक से बैठाइए, सारे कंफ्यूजन, सारे भ्रांतियां दूर कीजिए। थोड़ी बहुत थकान या थोड़ी बहुत कमजोरी तो देखिए, अगर हम पैरासिटामोल भी ले लेते हैं ना, बुखार की दवाई, उससे भी आ जाती है। और फिर फिजिशियंस हमें बीकासूल कैप्सूल दे देते हैं या मल्टीविटामिन दे देते हैं। सेम चीज कैंसर में हो रही है कि आपके शरीर के अनुपात के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से ही दवाइयां आपको दी जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग आते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और अपने काम पे जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, कुछ भी नहीं। भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, हिम्मत बांधिए, वक्त बदल चुका है। बड़ी मजेदार सी बात है डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे
0: जी।
1: और जबकि अगेन चेकअप वगैरह किसी का हो रहा था और कुछ भी नहीं निकल रहा था उनको, टीएमटी और इको और एवरीथिंग, तो यूं ही थोड़ी सी दोस्ती है उनसे, तो वो कहने लगे गोयल साहब आज की डेट में प्रॉब्लम है कि हर पेशेंट गूगल पेशेंट है, वो पहले से बड़ा पढ़ के आता है। कहता नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ है, और डॉक्टर कहते भाई तुम्हें कुछ नहीं है, कहता नहीं कुछ तो निकाल दो, हम आपको फीस दे रहे हैं। ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है दोस्तों, प्लीज। मुझे एक एक सेंटेंस बहुत ही पसंद आता है डॉक्टर साहब, मैं हर समय देता रहता हूं उसको, यू कैन गूगल एवरीथिंग but you cannot google experience.
0: That's very fantastic.
1: आप experience को google नहीं कर सकते, बाकी सब कर लो। तो दोस्तों please experience को google करने की कोशिश ना करें, विशेषज्ञों के पास जाएं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, बहुत मेहनत की है, उसे समझा है, तो बेहतर है उनको उनका काम करने दें, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए
0: जी।
1: इतना पूछना चाहूंगा कि किस किस तरह के कैंसर, वैसे आप जवाब दे चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार फिर से नंबर देकर बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के कैंसर दवाइयों से ऑलमोस्ट ठीक किए जा सकते हैं, नंबर देकर बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के कैंसर दवाइयों से ऑलमोस्ट ठीक किए जा सकते हैं।
0: प्रैक्टिकली सारे।
1: वाह क्या बात कही साहब, मजा आ गया सुन के। प्रैक्टिकली सारे
0: हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कुछ हैं जिनमें सिर्फ रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकली सारे जो हैं 80% ऑफ देम उनमें दवाई किसी न किसी फॉर्म में लगती है सर।
1: बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्यादा हिम्मत देने वाला स्टेटमेंट है जो डॉक्टर साहब ने दिया है। दोस्तों समझिए इस बात को, करीब करीब हर तरह का कैंसर ठीक किया जा सकता है, सारी टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर साहब को जानकारी है। बहुत बढ़िया, तो चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, हमने ट्रीटमेंट को देख भी लिया कि क्या होना है, उसकी परेशानियों को भी देख लिया और ये भी भरोसा ले लिया कि करीब करीब सारे कैंसर ठीक किए जा सकते हैं। अब बात आती है हिम्मत की, मोटिवेशन की।
0: मैं एक लाइन और बोलूंगा,
1: प्लीज डू
0: हम लोगों में, अर्ली डायग्नोसिस इज एन अश्योरेंस टू क्योर।
1: वाह क्या बात है जी, बिल्कुल।
0: तो अगर आपने जल्दी पकड़ लिया तो इट इज समथिंग लाइक अ क्योर।
1: बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंश्योर्स द कंप्लीट ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपने अर्ली उसे पकड़ लिया तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी जब हम ये बात कर रहे थे कि हम कौन कौन से टेस्ट करा लें, अपने आप को तैयार रखें कि खांसी 15 दिन से ऊपर जा रही है, वजन लगातार गिरा जा रहा है वगैरह वगैरह, हमने बात की थी ऊपर, वो इसी चीज का, इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा है कि हम पहले पकड़ लें। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारी हिंदुस्तानी मेंटेलिटी है कि 2-2.5 महीने तक पैरासिटामोल लेते रहो, देखते रहो, फिर देखेंगे। इसको हटाना होगा, हमें अब अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि नहीं, अपने आप को पहचानिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल इंश्योरेंस कराइए साहब, जाइए उनके पास, क्या डर है, डर को तो अब निकालना होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, तो आगे बढ़ते हुए अब बात आ जाती है कि आपके पास पहुंचा व्यक्ति, ने आपसे बातचीत की, आपसे काउंसलिंग ली, इलाज शुरू हुआ, तब किसी भी व्यक्ति को इलाज के दौरान अपना क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? वैसे तो आप उसे काउंसिल करते ही होंगे, किस तरीके का भोजन लेना चाहिए, किस तरीके के वातावरण में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे?
0: देखिए जब हम कीमो देते हैं या रेडिएशन या ऐसा कोई भी विद्या उस पेशेंट को एक्सरसाइज करते हैं तो एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी डाउन होता है, तो एक बेसिक हाइजीन आपको रखनी होती है। कोई भी व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है वो आपसे ना मिले, क्योंकि आपको 2-4 गुना ज्यादा सीवियर होगा क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है। दूसरा जहां तक खाने का सवाल है, हम एक ही लाइन कहते हैं कि साहब आप मांस मटन मच्छी ना खाएं क्योंकि वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं, और आप कच्चा कुछ ना खाएं क्योंकि वो भी इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है, कोई भी कच्चा पका या अधपका।
1: जी
0: घर में बना हुआ पका हुआ खाना सबसे बेहतरीन चीज होती है, आप वो खाइए। आप चूंकि पूरा का पूरा एक साथ नहीं खा पाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, सुबह और दोपहर और रात के खाने के हिसाब से।

0: मत खाइए, आप हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा एक कटोरी एक छोटी प्लेट में लेकर जितना आपसे बने उतना खाइए। ये एक मेजर चेंज होता है। और दूसरा मेजर चेंज इन्फेक्शन से बचना होता है
1: जी।
0: बाकी जितनी चीजें हैं वो सब मैनेजेबल हैं, सब एडजस्टेबल हैं। और मान लीजिए जैसे कुछ लोग हमें कहते हैं कि साहब बाल चले जाते हैं कीमो से, मैंने कहा साहब आ जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया आते हैं, बेहतरीन आते हैं, सरप्राइज होंगे 6 महीने बाद इतने बेहतरीन बाल आते हैं, उसका कारण नहीं हमारे पास
1: जी।
0: तो ऐसी चीजें हैं। फिर कुछ लोगों में कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण मुंह का टेस्ट चला जाता है, तो बोले साहब हम आम नहीं खा पा रहे। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, अगले गर्मी में आप बहुत अच्छे से खा पाएंगे। रिवर्ट्स विद टाइम।
1: बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया कही डॉक्टर साहब आपने बात। मुझे एक बात बढ़िया याद आ रही है, एक दवाई इजाद हुई ब्लड कैंसर में ही, उसी एरिया में, हिमाटोलॉजी में ही, आज से कुछ मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले शायद, जिसको
0: इमैटिनिब की बात कर रहे हैं आप।
1: जी जी जी जी, जिसको मैजिक बुलेट कहा गया, इमैटिनिब।
0: मैजिक बुलेट तो ठीक है सर, उसका इतना खराब प्रचार किया गया कि साहब सबने बोल दिया ब्लड कैंसर का एकमात्र इलाज,
1: एकमात्र इलाज
0: लोगों को समझाना।
1: जी जी जी जी,
0: कैंसर का
1: वो
0: कैंसर का,
1: आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर। उसे पता नहीं पूरे ब्लड कैंसर का इलाज मान लिया गया, ऐसा गलत था ऐसा। खैर धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई उस चीज को लेकर। लेकिन एक जैसे आपने कहा ना कि आम नहीं खा पा रहे हैं, हमारा मुंह का टेस्ट चला गया है, बाल नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो बाल जब आएंगे तो बड़े अच्छे आएंगे। इमैटिनिब से एक साइड इफेक्ट देखा गया जो बड़ा ही अमेजिंग था डॉक्टर साहब।
0: अभी गोरे हो जाते हैं
1: जी। जो भी इमैटिनिब खा रहे थे वो चमत्कारी तौर पर गोरे हो गए
0: सर। कुछ गोरे हो रहे थे, कुछ लोगों के गाल पे कालापन भी आ रहा था। इट्स अ मिक्स बैग,
1: इट्स अ मिक्स बैग, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो दोस्तों इस तरीके के साइड इफेक्ट्स इन दवाइयों के क्या सभी दवाइयों के होते हैं साहब? आप पैरासिटामोल लेते हैं, डाइक्लोफेनाक सोडियम लेते हैं, तो उसके साथ आपको डॉक्टर को एक ओमिप्राजोल देना पड़ता है क्योंकि उससे एसिड इतना बनता है कि आप डकारते ही रहोगे। तो ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे जो प्राइम मोटो है, जो एकदम प्राथमिकता है हमारी, कि हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। बहुत खूब डॉक्टर साहब। अब चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हेमेटोलॉजी के, यानी कि अगर ब्लड कैंसर के रक्त बीमारी के कोई मरीज हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ टेक्निकल या कुछ मोटिवेशनल, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: सर एक फिलोसॉफिकल संदेश देना चाहूंगा।
1: जी प्लीज।
0: उम्मीद रखिए बस।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, ये फिलोसॉफिकल थोड़ी हुआ डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल रामबाण हो गया, एक ब्रह्मास्त्र की तरह एक सेंटेंस। बहुत बढ़िया दोस्तों,
0: और कुछ नहीं सर, उम्मीद रखिए बस, सब ठीक होता है।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: अगर वो ठीक नहीं है तो वो अंत नहीं है।
1: वाह, हर जगह पर, हर स्क्रिप्चर में, हर रिलीजन में दोस्तों ये लिखा हुआ है, बोला जाता है, पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं, शायद कमजोर पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब आज इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि उम्मीद रखिए, उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी किरण है जो हमें पूरे संसार में सबसे स्वस्थ बनाती है, सबसे अच्छा बनाती है। डॉक्टर साहब चलते चलते फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि और अधिक जानकारी के लिए, आपसे संपर्क करने के लिए हम क्या करें?
0: कुछ नहीं सर, आप कभी भी एचसीजी हॉस्पिटल के लैंडलाइन पर कॉल करके बता दें कि आपको मुझसे मिलना है
1: जी,
0: हमारा स्टाफ मुझे अप्रोच कर लेगा एंड वी कैन टॉक।
1: बहुत
0: डायरेक्टली आपको मेरा नंबर मिल जाएगा एंड डायरेक्टली वी कैन टॉक।
1: बहुत बढ़िया,
0: ऐसे ही जैसे आपने, मैं आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट आई टोल्ड, ऐसा कहते हैं उम्मीद रखिएगा, सबसे बढ़िया और सुंदर उदाहरण मुझे एक अंग्रेजी की लाइन में मिलता है
1: जी,
0: जस्ट व्हेन द कैटरपिलर थॉट इट वाज अबाउट टू डाई, It became a butterfly.
1: Wow! क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों। आपको समझ में आया, जिस वक्त कैटरपिलर को लग रहा था कि बस वो मरने ही वाला है, तभी वो एक तितली बन गया। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है साहब, मजा आ गया। आप डॉक्टर की जगह अगर राइटर होते या संगीतकार होते तो बड़ा मजेदार बात है साहब।
0: सर लिटरेचर पढ़ने की आदत रही शुरू से,
1: क्या बात
0: मेरे
1: है,
0: फादर खुद एक ओरेटर रहे हैं और उनके कारण उनकी लाइब्रेरी होती थी, तो वो भी खुद डॉक्टर हैं तो पढ़ने के शौकीन हैं,
1: बहुत खूब।
0: तो उनके कारण वो एक नैसर्गिक रूप से हम बच्चों में वो आदत आई कि हम भी पढ़ें। और काफी समय तक स्कूल का डिबेट का एक्सटेम्पोर का और बाकी कॉलेज के स्टेज कंडक्ट करने का सबका अनुभव रहा, तो वहां उन जगहों पे बिल्कुल एकदम स्पॉन्टेनियस आपको बोलना पड़ता है, तो उसकी भी आदतें आती गई, तो इसलिए पढ़ने की आदत बनी सी रही, जो उसी के चलते शायद हम डॉक्टर बन गए और 2-3 डिग्रियां बड़ी बड़ी कर ली।
1: अच्छा हो गया सर, आप
0: आपसे इंटरव्यू में बात कर रहे हैं,
1: आप हमारे साथ हैं, तो आज बहुत हिम्मत बंधी है, मेरे सुनने वालों को भी बहुत भरोसा आया होगा। दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज बहुत अच्छा लगा है कि डॉक्टर सुनीत हमारे साथ हैं, हम सुरक्षित हैं, उनके एक्सपर्ट हाथों में हैं, तो बिल्कुल ना घबराइए, जरूरत लगे तो संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इन फॉर कमिंग इन माय प्रोग्राम, आई एम सीरियसली ऑनर्ड, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी बातें सुन के, आपकी आवाज

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ की कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं, तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, है मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वो मंच है जहां पर नए गायक, नए टैलेंट अपने प्रतिभाओं को दिखाते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी से। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर पुष्पा से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कौन है वो, कहाँ है वो, क्या करती है वो। डॉक्टर पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: नमस्ते, मैं पुष्पा हूँ, मुझे आप पुष्पा कुमारी के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और वर्तमान में मैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं अभी जोधपुर में हूँ। इसके पहले हमने 20 साल कोलकाता में बिताया है और वैसे मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है और यहाँ 2 साल हुए हैं मुझे जोधपुर आए हुए, पर ये जगह भी मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा जोधपुर भी सिटी है, इसको सूर्य नगरी कहते हैं हम। और बिहार के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, वो तो विख्यात है अपनी परंपरा और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर पुष्पा एक साइंटिस्ट हैं, अभी वो जोधपुर में हैं जिसको राजस्थान का रियल हेरिटेज सिटी बोला जाता है, जहां पर अगर आपको रियल राजस्थान देखना हो तो आपको जोधपुर में दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर पुष्पा के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब डॉक्टर साहब, चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में मैं एग्जैक्टली क्या बनना चाहती थी ये मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि बचपन तो मैंने बहुत बिंदास गुजारे हैं। बचपन में मैं बहुत शैतानी भी करती थी और पढ़ाई में बहुत अव्वल रहती थी मैं। और पढ़ाई मैंने बहुत मन से किया बचपन से ही। और स्कूली शिक्षा जब हमारी समाप्त हुई, मैं बता दूं आपको कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हूं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी पढ़ाई मैंने वहां से की। और जब हमने स्कूली शिक्षा समाप्त की, उसके बाद मेरे जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने MBBS के लिए कोशिश की। 3-4 साल अटेम्प्ट भी दिए उसमें, पर भगवान ने कुछ और फैसला रखा हमारे लिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं प्लांट जेनेटिक्स में काम करूं, रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो भी मेरा नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम मुझे एक मौका मिला, एक JRF-SHIP की इंटरव्यू की एक एडवर्टीजमेंट छोटी सी हमने देखी आफ्टर MSc, तो हमने उसमें अप्लाई की। और उसके इंटरव्यू के लिए हम गैंगटोक गए। गैंगटोक बहुत खूबसूरत सी जगह है, और वो जगह देख के मुझे लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और तब से हमारी दिशा बदल गई, और उसके बाद हमने रिसर्च में अपना कैरियर शुरू किया 2002 से। और उसके बाद मैं फिर साइंटिस्ट बन गई। और डॉक्टर जो थे, जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, डॉक्टर पुष्पा कुमारी जरूर बन गई हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। डिजिग्नेशन, खैर मेरा पर्सनली मानना है ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, आपका जो काम होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो गुण हैं उनसे आपकी पहचान होती है, आप क्या काम करते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर पुष्पा की ही आवाज में।

0: बहुत प्यारा। पुष्पा जी, बचपन से लेकर आज तक की जीवन में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे थे और क्यों?
1: ये तो एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं अपने सारे टीचर्स का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही थी और इनफैक्ट मैं बहुत सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ। और वैसा ही आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे टीचर भी हमारे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को कम या ज्यादा महत्व नहीं दिया, किसी भी टीचर को। जितने भी हमारे गुरुजन शिक्षक रहे, शुरू से हमने सभी को इक्वल मान दिया, सम्मान दिया। और वैसे मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब जैसे क्लास 1-2, ऐसे जो मुझे याद है, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, हमारे एक टीचर जो अभी भी है, हमारे रामबालक सर हम उनको बुलाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया है और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इनफैक्ट गाना गाना भी उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने शुरुआत की कि चलो ठीक है, इसको गाना आता है। उनको बहुत अच्छा आता था गाने, वो मुझे भी साथ साथ गवाया करते थे। और उसके बाद फिर अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ, आज मैं जो बनी हूँ, उसमें हमारे स्कूल में नवोदय विद्यालय के जो प्रधान जी थे, जो है अभी भी, डॉक्टर श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी, तो वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय। और जो उन्होंने हमारे अंदर वैल्यूज दिए हैं, और उसके एवज जो मैं आज बनी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी किसी के भी सामने खड़ी हो सकती हूँ। और मतलब आप क्या कह सकते हैं उसमें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन वे जो होता है, एक ट्रूथफुलनेस जो होता है, अपनी ड्यूटी के लिए जो आपकी सच्चाई है, वो आप कैसे वो करते हैं, कैरी करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई और इनकलकेट किया हमारे अंदर, जो वैल्यूज होते हैं मानव के जीवन में जो होने चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी हर बच्चों को मिले, कि उनको ऐसे अच्छे टीचर और गुरु मिले जो उनका जीवन संवार सके, जो मुझे मिला, मैं भगवान का बहुत बड़ा उपहार समझती हूँ।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। बहुत।
1: और मैं एक और नाम लेना चाहूंगी।

0: जो हमारे गुरु हैं अभी फिलहाल, मैं जिनसे संगीत की शिक्षा ले रही हूँ, ये मुझे अभी मिले हैं, मतलब 6-8 महीने पहले, वो भी SM के थ्रू इनसे जान पहचान हुई हमारी, और इनसे मैं अभी जुलाई से मैंने सीखना शुरू किया है। ये भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और इनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है, और इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, और जो मेरी सांगीतिक शिक्षा रहेगी अभी जीवन में इसके आगे, मुझे लगता है कि इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उसमें।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात कही आपने पुष्पा जी। जो मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है, आपके टीचर्स से आप बहुत इन्फ्लुएंस रहे, बहुत मोटिवेटेड रहे, सारे टीचरों को आपने बहुत रेस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। मुझे जो
0: जी
1: समझ में आया वो ये कि आपके सारे टीचर्स ने आपको बहुत विनम्र और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ तैयार किया। आप विनम्र हैं, हर चीज का श्रेय आप देना चाहती हैं, ना कि खुद लें। ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कलाकार के लिए कि वो विनम्र रहे, अहंकार का आ भी उसको छू के ना जाए। ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही प्यारा गीत पुष्पा जी का, जो हम पुष्पा जी के सारे टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं, और खास करके वो टीचर जो आज की डेट में पुष्पा जी का साथ दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
0: जी।

0: बहुत ही प्यारा गीत। तो आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी आपसे पूछना चाहूंगा आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए, ऐसे ऐसे कौन से तीन शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, जो आपको सबसे अच्छा डिफाइन करेंगे, आपकी शख्सियत को बयान करेंगे, आपकी शख्सियत पर सूट करेंगे, ऐसे तीन शब्द बताइए।
1: अच्छा, इसमें आप सबसे पहला तो ले सकते हैं, मैं बहुत ही डिसिप्लिन रही हूँ, तो यू कैन से दैट आई एम अ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन। और जिसको मतलब क्या करना है उसके लिए किसी को कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो मैंने खुद से किया। जब मुझे सेंस हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, देन आई एम वेरी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट कि मुझे ये करना है। और दूसरा मैं कह सकती हूँ आपको, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ तो कंपैशनेट हो सकती हूँ मैं दूसरों के प्रति। मुझे लगता है कि कोई सामने अगर कोई दुखी हो रहा हो किसी रीजन से, और मैं अगर उसको समझ पाती हूँ तो उसको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे अगर किसी के बात करने से या उससे बात करने से अगर उसकी कुछ तकलीफ कम हो जाए या फिर उसकी समस्या का समाधान हो सकता हो तो मैं करना चाहती हूँ। और खुश देखना चाहती हूँ मैं दूसरे लोगों को भी। और ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ, अगर कुछ घटना ऐसी भी हो जाए जिससे दुख पहुंचे तो मैं उसमें थोड़े, अब मानव हूं तो दुखी तो हो ही जाती हूँ थोड़े कुछ पलों के लिए, लेकिन फिर मैं उसमें बाद में ये सोचती हूँ कि इसमें अच्छा क्या हुआ या इसका अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान कुछ करता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखता है और एक जो नहीं दिखता होता है। तो जो अच्छाई जो नहीं दिख रही होती है, अगर उसमें कोई अच्छाई छुपी हुई है तो हमें उसको देखना चाहिए। और मैं देखने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ अपने आप को भी, और ऑप्टिमिस्टिक आप कह सकते हैं मुझे।
0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात
1: जी,
0: बड़े ही प्यारे तीन शब्द जिन्होंने आपको डिफाइन किया। दोस्तों अब आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर पुष्पा कैसे हैं। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत पुष्पा जी की आवाज में।

0: खूब। चलिए एक मजेदार सा ट्विस्ट लेते हैं, एक मोड़ लेते हैं। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने कुछ क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ये बहुत अच्छा सवाल।

0: पूछा है आपने, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ।
1: ओ
0: खाना बनाना मुझे कभी आया नहीं, और इसके कुछ मजेदार वाक्य हैं जो मैं बताना चाहूंगी।
1: जी
0: सबसे पहले एक्चुअली मैं स्कूलिंग हमारी ऐसी थी कि वहाँ हमें मेस की सुविधा रही, कभी भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो पहलू था, बाद बाकी सारे काम हमें खुद करने होते थे, तो सब तो हमने सीख लिया। खाना बनाना नहीं आता था, और घर में भी मैं बहुत लाडली प्यारी थी सबकी, तो किचन तक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी लोग जाने नहीं देते थे, तो चलो ठीक है, अभी खाना बनाना आया नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि घर में कोई था नहीं, मैं अकेली थी और पापा थे। शाम को पापा के बहुत सारे दोस्त आते रहते थे, हमारे पापा समाज सेवा में रहे शुरू से, तो लोग मिलने के लिए आते रहते थे बहुत सारे। उस दिन भी कई लोग इकट्ठे आ गए। उन्होंने, मेरा भाई चाय बनाया करता था, तो भाई था नहीं, पापा ने बोला कि चाय चाय बना दो, चाय चाय भिजवा दो। अब कोई था नहीं, तो मैंने चाय बना दी और चाय बना दी और दे भी दी। उसके बाद सब लोग चले गए, पापा ने कुछ बोला नहीं। और दूसरी बार जब कुछ हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि पापा मैं बना दूं, तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला, ना ना रहे दा, मतलब ना ना छोड़ दो, प्लीज आप मत बनाइए, रहने दीजिए। इसका मतलब ये था कि वो चाय ऐसी बनी होगी कि उन्होंने दूसरी बार प्रीफर किया होगा कि मैं ना ही
1: ओ
0: बनाऊं।
1: माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्यूट।
0: और खाना बनाने के संदर्भ में मैं ये बताऊं आपको कि जब मैंने अपनी रिसर्च के लिए गैंगटोक सर्कल में जब ज्वाइन किया था एज अ JRF,
1: जी
0: तो जब मैं वहां गई, तो वहां मुझे खाना बनाने की सबसे पहली बार जरूरत पड़ी 2002 से। तो मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो हमारी दीदी ने मसाले दिए थे मुझे कि सब्जी में डालने के लिए, हल्दी और धनिया मिर्ची, ये उसने रेशियो बताया था कि 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची, ऐसा डालना। और मैं अगर सब्जी बनाऊं, एक आलू और एक आदमी के लिए एक आलू और कुछ इतना डालू, तो उसमें मसाले में वही डालती थी, एक
1: ओ माय
0: चम्मच हल्दी
1: गॉड,
0: 2 चम्मच धनिया।
1: ओहो, फिर तो क्या बनता होगा।
0: तो वो क्या बनता था। उसके बाद वो खाई ना जाए और फेंकी भी ना जाए, तो मैं उसको क्या करती थी कि उसको मैश करके और फिर वो बना के कुछ

0: जाता है खाने के लायक।
1: ओके ओके ओके ओके, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात। दोस्तों आपने सुना किस तरीके की घटनाएं और किस तरीके की जुझारूपन पुष्पा जी ने दिखाया।
0: जी, खाना बनाने से वास्ता हमारा नहीं रहा शुरू से, तो इस फील्ड में मैं थोड़ी
1: रियली फन, बहुत बढ़िया
0: जी,
1: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, हो जाए पुष्पा जी की ही आवाज में एक प्यारा सा गीत।

0: आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा पुष्पा जी कि गाना गाने के अलावा, संगीत के अलावा आपकी हॉबी क्या है?
1: जी मैं एक्चुअली सबसे बड़ी हॉबी तो मेरी गाना सुनना और गुनगुनाते रहना और गाते रहना ही रहा है बचपन से. इसके अलावा मैं ड्राइंग भी करती हूँ, तो बचपन से मैं थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर लिया करती थी. उसमें पेंसिल आर्ट ज्यादा अच्छा था हमारा, क्योंकि फिर जब मैं पेंसिल का कुछ वर्क करती थी तो हमारे एक टीचर थे, वो उनको अगर पसंद आए तो वो कहते थे ये मुझे दे दो, तुम इसको और कुछ मत करो. तो कभी कलर कलर जो है उस पे करने का मौका नहीं मिला. तो पेंटिंग इनफैक्ट विद द कलर्स उतना अच्छा नहीं था, पर हाँ अब ये जो ड्राइंग हमने उस समय की उसका मुझे

0: अभी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है कि मैं बोटानिकल आर्ट्स की जो लाइन ड्राइंग होती है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, और जिसके लिए मुझे मतलब क्यू जर्नल्स या वहां से भी अप्रिसिएशन मिले कि आपकी बोटानिकल लाइन ड्राइंग्स बहुत उम्दा क्वालिटी की है और काफी अच्छी बनी। हमारी अभी जो बुक आई है उसमें भी सारे हमने खुद बनाए हैं। और इसके अलावा पुरानी फिल्में देखना मुझे पसंद है, और फिलहाल आप वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे मैं जाती ही जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है करना।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। बस
0: जी
1: यूं ही बात को जरा सा आगे बढ़ाने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा पुरानी फिल्में देखना आपको पसंद है, कौन सी फिल्म लेटेस्ट में आपको पसंद आई है?
0: अभी हमने थोड़े दिन पहले दोबारा से मंडी देखी थी, और एक मूवी आई थी आलाप जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, और वो मैंने देखा ऐसे ही
1: क्या बात
0: आपके प्राइम उस पे। जी दो मूवी हमने पुरानी देखी है, मतलब 10-15 दिन पहले तक।

0: जी
1: पुष्पा जी, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ
0: जी
1: लोगों के व्यवहार में, किसी के मैनरिज्म में कहीं कुछ आप ऐसा पाती हैं जो आपके एक अच्छे खासे मूड को खराब कर देता हो? ऐसा क्या होता है?
0: हाँ जी सर, होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, और उस समय कोई सामने आपके साथ जो लोग हैं या फिर आपके ऑफिस में, आपके घर में, कहीं भी, वो कुछ ऐसा कर जाते

0: आपका एक तो मूड खराब हो जाता है, फिर आपका जो टाइम है वो पूरा चला जाता है उसमें, आपकी पॉजिटिव जो दिशा में एक आपकी सकारात्मक एनर्जी जाना चाहती थी वो फिर वहां से ड्रैग आउट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उल्टे दिशा में लेके जाती हैं आपको। कभी कभी आप इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, तो या फिर अपने ही लोगों में जब अनबन सी रहे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई बात समझ नहीं रहा, आपका कोई अपना ही खास आदमी हो वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, या उस तरीके का कुछ ऐसा आ जाता है मैटर, तो फिर ये इन सारी चीजों से थोड़ी परेशानी तो होती है
1: ओके ओके ओके,
0: जी।
1: हम इंसान हैं पुष्पा जी। दोस्तों आपने सुना, किसी भी इंसान की तरह पुष्पा जी भी परेशानी महसूस करती हैं लोगों के व्यवहार से। ये सवाल जानबूझकर मैं हमारे टैलेंट से इसलिए पूछता हूं दोस्तों कि हम इनके जवाब को सुनते समय खुद को चेक कर पाए कि कहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, और किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हम अपने आप को सुधार लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक प्यार सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी की ही आवाज में।

0: तो आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी, हमें बताइए ना, आपकी जिंदगी में अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
1: सर देखिए, मैंने लगभग अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा ही पार कर ली है अभी तक तो, और मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने लोग हैं, जैसे मेरी माँ पापा, पापा तो अब खैर फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उनका धरती पर, लेकिन फिर भी जान में तो रहते ही हैं,
0: जी
1: और जो अपने मतलब भाई बहन हैं, तो इनको सबको जरूर लगता है कि दीदी ने बहुत अच्छा किया है कुछ, तो दे थिंक कि मैं जैसे मैं साइंटिस्ट बन गई या फिर मैंने किताब लिख ली, मेरी कोई बुक पब्लिश होके आ गई,
0: जी
1: तो इन सारी चीजों से उन लोगों को लगता है कि हाँ दीदी ने कुछ अच्छा काम किया है। मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ तो योगदान है मेरा। जैसे मैं अभी बताऊं आपको कि मैंने मेरा जो काम है बेसिकली साइंटिस्ट के तौर पर, वो मैं बैम्बूज के ऊपर काम करती हूँ। मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ और टैक्सोनॉमी पे काम रहता है हमारा। टैक्सोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, उसकी क्या उपयोगिता है, और उसमें आप और फर्दर उसका क्या यूज हो सकता है, कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑन ग्राउंड जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा जो हमने 2002 में अपना सफर शुरू किया था रिसर्च का, और लगभग 20 साल काम करने के बाद एक हमारे BSI की तरफ से जो पब्लिकेशन आई है, हमारी फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज हमारा पूरा रिवाइज हुआ है, उसमें बैम्बू स्वाइटी एक सेपरेट वॉल्यूम बन के आई है, जो कि 50-100 साल तक लोग उसको रेफर करेंगे, और वो एक बेस जो जो होता है रिसर्च का वो रहेगा, तो पूरी दुनिया में उसको लोग जानेंगे। तो ये मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये हमारा एक योगदान, एक उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं।

0: पुष्पा मैम, हम अपने प्रोग्राम के उस पदान पर आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की जो भागदौड़ की स्टाइल हो गई है, जीवन में एक वे ऑफ लिविंग हो गई है, उसमें लोग बहुत ही ज्यादा टेंशनाइज्ड रहते हैं हमेशा, और जीवन को जीना भूल गए हैं। एक तरीके से आप कहें तो सिर्फ गुजार रहे होते हैं अपनी जिंदगी, और दुनिया में लोगों की संख्या दिन पर दिन भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन एक एकाकीपन जो है वो लोगों में बहुत गहरे बैठ रहा है, जिससे लोगों में एक अविश्वास और इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स वो सारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करें, अपने जीवन को रोज जीना। जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी, चूंकि मैं भी ऐसे ऐसे दौर से गुजरती रहती हूँ बीच बीच में, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे एक बेहतर तरीका सोच सकूँ अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने का, क्योंकि जीवन तो एक ही मिलता है सबको, उसमें हर दिन आदमी को इस तरीके से जीना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ ठीक है, आज का दिन मैंने अच्छे से जिया और भरपूर जिया। तो अपने अपने जो लोग हैं आपके, उनसे मिलते रहिए, उनको उनके दुख सुख में शामिल होइए, उनकी खुशियों में शामिल होइए। आजकल लोग खुशियों में कम शामिल होना चाहते हैं, दुख में भले ही दुख दिखा देंगे लेकिन दूसरे की खुशी देखकर लोग सोचते हैं कि अच्छा वो इतना खुश क्यों है। तो ये सब नहीं करें, और सही अपने दिल को साफ रखें लोगों के बीच में, और विश्वास करें एक दूसरे का, अपनी सोच सकारात्मक रखें तो सब कुछ अच्छा दिखता है और अच्छा होता भी है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो अपने लोग हैं कम से कम उनसे जुड़े रहें, क्योंकि आजकल डिजिटली तो हम लोग जुड़ गए हैं, लेकिन जो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता था वो काफी हद तक, और एक विश्वास जो है वो काफी हद तक बहुत दूर हो गया है लोगों से। तो उन सब चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर, और जो जीवन के जब लास्ट एक वो आता है, आदमी जब सोचता है कि हमने पूरे जीवन बिता लिए और ये नहीं किया, लोगों से जुड़े नहीं रहे, तो अंत समय में एकाकीपन और ज्यादा खलता है, उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहता करने को। तो समय हमें एक बेहतर वो देने का तो जरूर उपाय करता है, आपको मौका देता है, तो आप उस तरीके से जिए। और अंत में मैं अपने आपके इस चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी लोगों को कि यहाँ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो एक से एक बढ़िया कलाकार है, और सब लोग अच्छा कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा हो सकता है, और वो अपनी प्रतिभा को और अच्छा निखार सकते हैं, यहाँ पे उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जारी रखें और भरपूर सहयोग जो है वो देने की कोशिश करें।
0: बहुत खूब डॉक्टर पुष्पा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारी बातें कहीं आपने, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, थैंक यू सो मच।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया लोगों से जुड़ने का, क्योंकि ये एक पहला हमारे लिए भी मौका है जहाँ हमारे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं लोगों से सीधे जुड़ सकूँ, बात कर सकूँ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को हमारा प्रणाम, नमस्कार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में एक नए टैलेंट, एक नई गायिका, एक नए सिंगर हमारे साथ हैं जिनका नाम है अंकिता जी। बाकी अंकिता जी खुद बताएंगी। तो अंकिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम अंकिता काकोटी है और मैं गुवाहाटी आसाम की रहने वाली हूँ और यही पली बड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया। और आज के कलाकार इस कार्यक्रम को मैं काफी समय से सुन रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि अलग अलग जो आवाजें सुनाई दे रही है, देती है, तो वो काफी मीठी और सुरीली है। हर एक प्रांत के लोग इस प्रोग्राम में आमंत्रित किए जाते हैं और उनको सुनकर ये महसूस होता है कि हमारे भारत में अनेकता में भी एक एकता छुपी हुई है और यही हम सबको अलग बनाती है और स्पेशल बनाती है। और इसी के साथ मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में बोलूं तो फिलहाल मैं एक कंटेंट राइटर हूं और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रही हूं रिमोटली, और साथ ही साथ मैं PhD की शिक्षा भी कर रही हूँ, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मैं अपनी PhD कर रही हूँ। और संगीत की शिक्षा मैंने विशारद कंप्लीट की है और एक प्राइवेट म्यूजिक स्कूल से, असम से ही मैंने म्यूजिक की तालीम ली है और यही है मेरी लाइफ की कुछ बातें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकिता जी। दोस्तों आपने सुना अंकिता जी गुवाहाटी आसाम से हैं, तो जाहिर से बात है जैसा अंकिता जी ने बिल्कुल सही कहा, पूरा हिंदुस्तान जुड़ता ही जा रहा है। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को अंकिता जी के ही गाए हुए प्यारे से गीत से।

0: बहुत सुंदर। अंकिता जी चलिए बचपन में चलते हैं, छोटे बन जाते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: सर क्रिएटिविटी का मुझे काफी लगाव था बचपन से ही, और किसी भी क्रिएटिव चीज को जैसे कि आर्ट हो गई, पेंटिंग हो गई, तो उससे मेरी काफी खिंचाव थी। और मैं और मेरी बहन हम दोनों स्क्रिबल किया करते थे, हमारा एक बहुत मजेदार गेम हुआ करती थी। तो हम क्या ड्राइंग बुक में मैं अलग अलग वो फैशन शो ऑर्गेनाइज करती थी, मतलब फैशन वो ड्रॉ करती थी, स्क्रिबल करती थी, और एट लास्ट हम लोग विनर्स डिक्लेयर करते थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये एक बहुत मजेदार गेम थी हम लोगों की। और साथ ही में मैं एक हम लोग प्राइवेट गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो वहां पे मतलब मेरे काफी सारे दोस्त थे, हम उम्र के थे सब लोग। तो हम लोग एक ईयरली एक प्रोग्राम हम लोगों ने वो किया, ऑर्गेनाइज किया, उसका नाम था कैंपस टाइमपास शो। तो हर एक घर के लोग बच्चे आके अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे, कोई गाना गा लेता था, कोई मोनोलॉग करता था, कोई डांस करता था। तो यही सारी क्रिएटिव चीजें मेरे अंदर थी, और हमेशा से मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में, म्यूजिक या मीडिया में कुछ करना था। और बचपन से ही मैं क्रिएटिव पर्सन बनना चाहती थी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। दोस्तों चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अंकिता जी की ही आवाज में।

0: अंकिता जी, क्रिएटिविटी से भरे हुए बचपन में आपके कौन से ऐसे टीचर थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया, प्रभावित किया? आपके फेवरेट टीचर कौन थे?
1: तो मेरी जिंदगी में टीचर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमेशा से। मेरी बहन भी एक टीचर है, शी इज अ प्रोफेसर, और साथ ही में हमारे फैमिली में भी काफी सारे टीचर्स और प्रोफेसर है। तो सबसे अगर बोले मेरे फेवरेट टीचर में से दो टीचर्स का मैं नाम लेना चाहूंगी। एक तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब अभिक्षा मिश्रा जी करके हमारी एक टीचर हुआ करती थी, तो वो मुझे काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती थी कि कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, या तो फिर आप मैं बीच बीच में अटकती थी कभी कभी प्रेजेंटेशन जब देती थी, क्योंकि वो नया भी था मेरे लिए कोर्स, मैंने बीबीए किया था। तो तब वो ट्रिक्स देती थी कि कभी भी अगर हिचकिचाओ या तो फिर अटको तो प्लेन सरफेस में हम लोगों को 5-6 सेकंड के लिए देखना चाहिए और फिर से हमको कंसंट्रेशन। तो ऐसी सारी चीजें वो बताती थी, और रादर देन मतलब मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के बजाय वो सुधारने की कोशिश करती थी स्टूडेंट्स को। तो वो चीज मैंने सीखी और अपने लाइफ में भी वो चीज लाने की कोशिश की। और दूसरी टीचर जो है मेरी मास्टर्स एमबीए की टीचर अभिनव जयसवाल मैम, तो वो उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि फिल्म पहले कैसे होती थी, एक एस्केपिस्ट मीडियम कहते थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी बिजनेस है उससे बचने के लिए फिल्म देखने के लिए लोग जाते थे, बोर्डम के लिए बचने के लिए, और फिर वो कैसे आर्ट फॉर्म बनी और कैसे मतलब पैरेलल फिल्म्स आई, फिर कमर्शियल फिल्म्स कैसे आए। तो फिल्म के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी बताई, हर एक एंगल से कैसे देखा जाता है फिल्म। तो ये सब चीजें मुझे बताई जो आगे चल के मेरी लाइफ में काफी काम आए, और अभी जो जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, तो उस पे भी मैं काफी सारे उनकी चीजें लेके चल सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टीचर्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। तो ये दोनों मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक रहेंगे, अभिनव मैम और अभिक्षा मैम।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगला गीत जो आपने गाया है हम आपके फेवरेट टीचर्स को डेडिकेट करते हैं। चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अंकिता मैम, मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिफाइन करते हैं, आपकी डेफिनेशन बताते हैं, कौन से तीन शब्द हैं?
1: तो तीन शब्द में अगर मैं बोलूं तो एक होगा रचनात्मक, क्रिएटिव, और दूसरा होगा सशक्त, जो एम्पावर्ड, और तीसरा होगा संवेदनशील।
0: ओके,
1: तो ये तीन वर्ड्स मेरे जिंदगी में काफी मायने रखते हैं और कहीं ना कहीं ये परिभाषित भी करते हैं मेरी लाइफ को।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। क्रिएटिव रचनात्मक हो गया, एम्पैथेटिक आप संवेदनशील हैं, और तीसरा आपने बताया था एम्पावर्ड, सशक्त। हाँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, अंकिता जी का ही गाया हुआ।

0: आगे बढ़ते हैं अंकिता जी। जैसे आपने कहा कि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, बचपन से क्रिएटिव हैं, तो चलिए एक क्रिएटिव क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आप कहें तो।
1: जी बिल्कुल।
0: फर्ज कीजिए आपको 24 घंटों के लिए, 24 आवर्स के लिए गायब कर दिया जाए, इनविजिबल बना दिया जाए, तो उन 24 घंटों में क्या करना पसंद करेंगे आप?
1: तो मुझे मतलब दो जगह जाने की बहुत तमन्ना है, और अगर मुझे 24 घंटे के लिए मतलब ये मिले ये मौका, एक तो मैं अंतरिक्ष में जाना चाहूंगी,
0: वेरी नाइस वेरी नाइस,
1: तो वहां पे एक्सप्लोर करना चाहूंगी कि लाइफ बियॉन्ड जो बोलते हैं, जैसे कि आप अंतरिक्ष में लाइफ कैसी होती है और कैसे लोग वहां पे गुजारा करते हैं, तो वो चीज, और यूएफओ को से भी मुझे काफी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में भी मैं जितना हो सके 24 घंटे में जानना चाहूंगी और उनके साथ मतलब एक दिन गुजारना चाहूंगी मैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी ही मजेदार बात कही अंकिता जी ने। सचमुच आप एक क्रिएटिव पर्सन है, इतना क्रिएटिव सा जवाब, बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यूएफओस के बारे में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आप

UFOs, unidentified flying objects के बारे में जानना चाहेंगी, आप अंतरिक्ष में जाना चाहेंगी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ एक दिन गुजारना चाहेंगी। बड़ी खूबसूरत बात। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अंकिता जी का ही गाया हुआ।

0: अंकिता जी, आपकी हॉबीज क्या है? गाना गाने के अलावा बताइएगा, आपकी हॉबीज क्या है?
1: जी, तो गाने के अलावा मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं कुकीज व कपकेक्स, या क्रिसमस में एक स्पेशल होता है प्लम केक, तो वो मैं बनाती हूँ घर में। और काफी नए नए रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। और जैसे हम लोग के असम में एक फेमस रेसिपी है तिल चिकन, तिल से बनाया जाता है, तो वो भी मुझे काफी पसंद है बनाना। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं ये सारी चीजें, क्योंकि मतलब बचपन से ही हम लोग बहुत पेरेंट्स वर्किंग हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों वर्किंग थे, तो हम लोग को टाइम काफी मिलता था। तो हम जब भी फ्री टाइम मिलता था, हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे ऐसे चीजें। तो ग्रेजुअली मुझे बेकिंग का भी बहुत वो इंटरेस्ट आया, तो इसीलिए गाने के अलावा बेकिंग मुझे करना बहुत पसंद है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मुझे वॉइस एक्टिंग का भी शौक है, और मैं वॉइस आर्टिस्ट के हिसाब से भी मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं तो ब्रांड्स के साथ। तो वॉइस एक्टिंग का भी मैंने 4-5 सालों से मैंने सीखा है, सेल्फ लर्निंग की है यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के। तो वॉइस एक्टिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत ऐसा शौक है, तो कहा
0: बहुत
1: जाए तो
0: बढ़िया,
1: हॉबीज।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। दोस्तों, आपने सुना कितने खूबसूरत और कितने क्रिएटिव हॉबीज हैं अंकिता जी की। चलिए फिर एक गीत भी सुनते हैं अंकिता जी का ही गाया हुआ।

0: अंकिता जी, पूरे दिन में जब कभी भी आप बहुत खुश रहती हैं तो क्या कोई ऐसी बाधा, कोई हर्डल आता है नॉर्मल रूटीन में, रेगुलर आ जाता हो, जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, आपका मूड खराब करके चला जाता हो, ऐसा क्या होता है?
1: रेगुलर रूटीन में अगर देखा जाए तो हेल्थ ही एक ऐसी चीज है, तो मुझे बीच बीच में मतलब वो होता है कि बीच में मतलब क्या था, मुझे सांस की भी अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी एक वक्त पे जब मैं स्टूडेंट थी, और उसके बाद भी जब वर्क लाइफ में भी आई तो एक बार मतलब टूर जॉब काफी हो गया था मेरा, टूरिंग रिलेटेड जॉब, तो उसमें भी मेरी तबीयत काफी खराब रहती थी क्योंकि जंक फूड वगैरह हम ट्रेवल पे खाना पड़ता था, तो उसको कैसे मैं डील किया मैंने, तो नेगेटिविटी को भी मैंने पॉजिटिव वे में लिया. अपार्ट फ्रॉम मतलब मेडिसिन जो हम लोग प्रेस्क्राइब डेफिनेटली डॉक्टर से करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी होता है,
0: श्योर,
1: तो व्यायाम और योग के द्वारा मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, और मैं अभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये इंप्लीमेंट करती हूँ कि योग, मेडिटेशन या एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखूँ, और जितना हो सके होममेड फूड कैरी करूँ या खाऊं, तो ये सारी चीजें मतलब बाधाएं मैंने नेगेटिव बाधाएं भी पॉजिटिव करने की कोशिश की है लाइफ में.
0: अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया आपने। चलिए दोस्तों, सुने एक और प्यारा सा गीत अंकिता जी का ही।

0: और अंकिता जी, आपकी जिंदगी में अब तक सबसे इंपॉर्टेंट अकॉम्प्लिशमेंट या बहुत गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही है?
1: सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक अगर मैं बोलूं तो वो रहेगी, मैंने मास्टर्स में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन हुआ था, प्रेजेंटेशन कंपटीशन। तो वहां पे मैंने अपने आसाम के एक फेमस नाट्यकार है हमारे ज्योति प्रसाद अगरवाला, उनके ऊपर एक प्रस्तुति की थी मुझे। मैंने उनकी एक चलचित्र है जो आसाम की पहली फिल्म है, पहली चलचित्र है जौनमती करके, वो एक आसाम के वीरांगना जौनमती कुंवरी या सती जौनमती भी बोलते हैं उनको, तो उनके उनकी कहानी को लेके बनाया गया है। तो कैसे उनकी स्ट्रगल की कहानी, उनके जो पति गोदापनी थे वो एक वॉरियर थे, तो वो उनके बारे में जौनमती बोलती बताती नहीं थी कि वो कहाँ पे है, तो उनके ऊपर भी काफी अत्याचार हुआ, और वो उन्होंने कैसे अपनी साहस और बलिदान की कहानी है ये, कैसे वो उन्होंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, तो सेक्रीफाइस की कहानी है। तो वो चीज मैंने जब प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया तो सारे जजेस काफी अप्रिशिएट किया, सारे जजेस ने, और उनको काफी अच्छा लगा कि एसमीज फिल्म एक 1935 में रिलीज हुई,
0: ओ
1: तो
0: माय गॉड,
1: उनको पता नहीं था ये चीज।

0: 1930s के दौर में आई थी, और ऐसे मतलब अहोम किंगडम के बारे में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट की गई है, क्योंकि अहोम किंगडम हमारे आसाम में 600 साल तक उन्होंने राज की थी। तो उसके बारे में मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी कम चर्चा होती है, तो फिल्में बननी चाहिए इस सब्जेक्ट पे। तो इसी वजह से मतलब ये एक चीज मैं हमेशा मतलब मेरी लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट मेमोरी रहेगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल चूज किया हुआ सब्जेक्ट दोस्तों, बहुत बढ़िया। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अंकिता जी की ही आवाज में।

0: अंकिता जी आगे बढ़ते हैं, अभी तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है और किसने दिया?
1: वैसे तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, मेरे प्रियजनों ने दिए है, मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन सबसे कीमती में से एक अगर बोलूं तो वो रहेगी द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो गिफ्ट है, तो वही मेरे लिए सबसे कीमती और महत्वपूर्ण है लाइफ में, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को एजुकेटेड होना चाहिए अपने फील्ड में, क्योंकि तभी वो अपने क्षमता के द्वारा, अपने साहस के द्वारा एक दिशा नियंत्रण कर सकते हैं लाइफ में। और मुझे मेरे मम्मी पापा ने इस काबिल बनाया, मुझे प्रबल बनाया, शिक्षा के द्वारा शिक्षित बनाया, ताकि मैं लाइफ में कुछ कर सकूं और मेरी गोल्स को अचीव कर सकूं मैं, तो ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, गिफ्ट ऑफ एजुकेशन।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया बात। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं आपकी आवाज में।

0: अंकिता जी, अब हम लोग हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए ना, उनसे कुछ कहिए।
1: सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद मेरे गीतों के साथ साथ मेरी कहानी और किस्सों के बारे में भी सुनने के लिए। तो मेरा एक मैसेज जो मैं सभी को देना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में चाहे जो भी परेशानियां हो या जो भी चैलेंजेस आए, आप लोगों को हमेशा से ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और म्यूजिक या कोई भी चीज जो आपको खुशी दे, तो वो चीज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिन में अगर आप 10 मिनट का समय भी निकालते हो उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखने के लिए, तो वो चीज अपने लाइफ में जरूर लाइएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि वो चीज लाने से आपकी जिंदगी में एक खुशी और एक सेटिस्फेक्शन हमेशा से रहेगा कि आप कुछ कर पाए हो। तो इसी के साथ मैं आप सभी को मेरी तरफ से आदर भरा प्रणाम।
0: थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हमारे साथ जो हैं वो शायर हैं, उनका नाम है डॉक्टर नितिन उपाध्याय साहब। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर साहब से ही करेंगे। नितिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है आपका जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। अपना छोटा सा परिचय दें नितिन सर।
1: समीर भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, और आपके द्वारा आपकी मार्फत में आपके सभी श्रोताओं को अपना नमस्ते कहता हूँ और अपना आदाब बजा लाता हूँ, उन्हें अपना प्यार प्रेषित करता हूँ। मैं नितिन उपाध्याय इंदौर में पला बढ़ा और मेरी शिक्षा उज्जैन में हुई। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कुछ वर्ष मैंने इंडस्ट्रीज में जैसे तिलस्कर और टाटा में बिताए, फिर मैं एजुकेशन की तरफ मुड़ा और गाजियाबाद एनसीआर में बहुत से कॉलेजेस में पढ़ाया, और पिछले 10 वर्षों से मैं दुबई में पढ़ा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ये कोर्स, और अभी दुबई में मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ।
0: बेहतरीन सर, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत रिज्यूमे है, पावरफुल क्रेडेंशियल्स हैं, तो हमारे सुनने वालों को पता लग गया होगा कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि आप कुछ अच्छे कलाम, कुछ अच्छी नज़में, कुछ अच्छे गजल उन्हें सुनाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपनी कोई अपना कोई कलाम, अपनी कोई नज़्म, अपनी कोई गजल हमें सुनाए।
1: धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि मैं अभी गजल कहना सीख रहा हूँ, कविताएं लिखना सीख रहा हूँ, एक विद्यार्थी ही हूँ इस क्षेत्र का, और प्रयास करता हूँ कि जो भी लिखूं दिल से लिखूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शब्द बाद में आते हैं, पहले भाव होते हैं। अगर भाव अच्छे हैं और हम शब्दों में गूंज सके तो ही एक अच्छी कविता, अच्छी शायरी, अच्छी नज़्म बनती है। तो आपका आदेश मानते हुए मैं अपना एक शेर पढ़ता हूँ पहले सबको। मैं गिराया अगर नहीं जाता, मैं गिराया अगर नहीं जाता, कौन कहता वो मुझसे ऊंचा है।
0: क्या बात है।
1: तो एक ही फलसफा है जिंदगी का, और जिंदगी में जो भी लोगों से मिला हूँ, तजुर्बे हुए हैं और जो सीखा है उसको अपने शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी छोटी बहर की गजल कहने का प्रयास किया है, देखिएगा
0: जी।
1: न राजा रहेगा न रानी रहेगी, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, फिजा में अधूरी कहानी रहेगी
0: जी।
1: भलाई बुराई भले ही मिटा दे, भलाई बुराई भले ही मिटा दे, मगर ये लड़ाई पुरानी रहेगी। सुनो ध्यान से क्या नदी कह रही है, सुनो ध्यान से क्या नदी कह रही है, यहाँ साफ जल तो रवानी रहेगी। अगला शेर है
0: जी।
1: मिली नौकरी तब कहाँ जानते थे, मिली नौकरी तब कहाँ जानते थे, बड़ी तेज अब जिंदगानी रहेगी। कहाँ फूल में एक खिलती कली से
0: जी,
1: कहाँ फूल में एक खिलती कली से, हमेशा न तेरी जवानी रहेगी।
0: वाह,
1: शुक्रिया। और अगला लिखिएगा, नशे का अगर साथ लेगी जवानी, नशे का अगर साथ लेगी जवानी, सदा मौत के दरमियानी रहेगी। अगला है, गुनाहो जमी कह दी बे बेगुनाही, गुनाहो जमी कह दी बे बेगुनाही, सजा तो मगर आसमानी रहेगी।
0: खूबसूरत, बहुत खूबसूरत,
1: शुक्रिया शुक्रिया। और ये शेर हम मक्का कह सकते हैं, आप उधर नजर करता हूँ, ये मेरा नाम तुमने नहीं अभी कोई तखल्लुस रखा है
0: जी,
1: ये आपको मैं शेर समर्पित करता हूँ भाई।
0: ओह माय गॉड।
1: चलो आज कह दूं गजल एक तुम पे
0: जी,
1: चलो आज कह दूं गजल एक तुम पे, यही तो हमारी निशानी रहेगी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या।
1: चलो आज कह दूं गजल एक तुम पे, यही तो हमारी निशानी रहेगी। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, फिजा में अधूरी कहानी रहेगी।
0: बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत,
1: शुक्रिया शुक्रिया
0: साहब, शानदार, मतलब क्या शब्दों को पिरोया है और क्या भावनाओं को जाहिर किया है, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। नितिन भाई, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ही पसंद के किसी गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुना सकें।
1: समीर भाई, गजल की जब बात निकलती है और हम भारत में हैं तो बचपन से मैं जिनको सुनता आया हूँ, बेगम अख्तर साहिबा।
0: वाह,
1: उनकी आवाज में जो कशिश है, जो एक सोच है, वो साल है, जो शायद हो सकता है गजल गाने के लिए ही उनका जन्म हुआ ऐसा लगता है कई बार।
0: जी जी।
1: और ऊपर से जब वो गजल गाती है शफी बदायूं साहब की, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया ये गजल सुनते हुए जिसने मोहब्बत न भी की हो उसे भी पता लगने लगता है कि उसकी मोहब्बत हो जाए और वो मोहब्बत फेल भी हो जाए या असफल हो जाए और उसके बाद ये गजल बन गया है। तो ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये दिल के बहुत करीब है। मैं मोहब्बत में नाकाम नहीं हुआ, पर फिर भी सभी मोहब्बत करने वालों के नाम पर ये गजल मेरी तरफ से आप अपने श्रोताओं को सुना सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक नितिन जी। तो आइए दोस्तों, नितिन जी की फरमाइश पर यही गजल सुनते हैं।

0: नितिन जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही छोटा सा सवाल पूछूंगा कि फर्ज कीजिए आपको कोई तीन ख्वाहिशें पूरी करने वाला जिन मिल जाए, तो तीन क्या ख्वाहिशें मांगेंगे आप?
1: सबसे पहले तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे माता पिता जो बिछड़ गए हैं उससे 2020 में, मैं उनसे मिलना चाहूंगा
0: जी।
1: और मैं चाहूंगा कि मैं उनसे बात कर सकूँ, उन्हें कह सकूँ कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था, प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता रहूंगा।
0: बेहतरीन।
1: दूसरा ख्वाहिश को मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में, भारत देश में जो एक अमीर गरीबी के बीच का बहुत बड़ा फासला है, या जो अशिक्षा है और जो एक वैमनस्य भावनाएं बढ़ रही है, उसको हम कम कर सकते हैं क्या?
0: जी
1: शायद जिनके बस में हो, ये ऐसा मुझे लगता है।
0: बहुत सुंदर। और तीसरी ख्वाहिश?
1: और तीसरी ख्वाहिश इस वक्त की बात आ रही है कि मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मिलूं और आपके साथ में समय और बिताऊं, आपसे आपकी आपकी आवाज इतनी मीठी है कि ऐसा लगता है कि आपको शायद दिन भर सुनता रहूं, आप सामने देखकर।
0: शुक्रिया नितिन जी, थैंक यू सो मच। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा और जो भी मेरे इष्ट देव है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये वाली ख्वाहिश तो पूरी कर देंगे कम से कम।
1: ये जरूर होगी, हम चाहेंगे आप दुबई आए तब हम मिलें, या फिर जब हम कहीं आगे किसी मोड पर किसी समय पर एक दूसरे मिले, हम और थोड़ा समय बिताए।
0: तो नितिन जी, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली नज्म या गजल पढ़ें।
1: एक गजल मैंने कही है और जो यही बात होती है विषमताओं पर होती है, जो समाज में दिख रहा होता है उसको देखकर लिखी थी। इसका मतलब सुनिएगा
0: जी।
1: जो बाहर से हमें लगता हरा है
0: जी,
1: जो बाहर से हमें लगता हरा है वो भीतर पूरा ही विश्व से भरा है। मैं हिंदी शब्दों का भी प्रयोग करना चाहता हूँ गजल में और मिशन से आप सब प्रभावित हो।
0: स्वागत है आपका, स्वागत है।
1: जो बाहर से हमें लगता हरा है वो भीतर पूरा ही विश्व से भरा है, न जाने क्यों चरागों को गुमा है, न जाने क्यों चरागों को गुमा है, हवाएं उनको देती आसरा है।
0: वाह।
1: चला है वो जमाना बस में कर में, चला है वो जमाना बस में कर में, मगर लगता है वो खुद से डरा है। अगला शेर सुनिएगा
0: जी। इरशाद।
1: गला अपना बचा के रखना यारो, गला अपना बचा के रखना यारो, लगा बंदर के हाथों उस तरह है।
0: बेहतरीन।
1: और एक कभी जो बहुत दो तीन सालों से युद्ध चल रहा है उसके बारे में लिखा था, उसको सोच के लिखा था, आप समझ जाएंगे मेरा इशारा कहाँ है।
0: जी जी जी।
1: लड़ाई जाने कब उनकी रुकेगी, लड़ाई जाने कब उनकी रुकेगी, जहाँ तनकी के आगे मसखरा है। लड़ाई जाने कब उनकी रुकेगी, जहाँ तनकी के आगे मसखरा है। जो बाहर से हमें लगता हरा है वो भीतर पूरा ही विश्व से भरा है। ये एक आज के समय पे आज के लोगों को देखते हुए जो विचार आते हैं उन्हें गजल के रूप में पेश किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपके श्रोताओं को ये मेरे ख्याल पसंद आएंगे।
0: बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्दों से खेलना तो साहब को ही आप लोगों से सीखे।
1: नहीं नहीं, ये तो कला आपको ज्यादा आती है सभी भाई, क्योंकि हम आपको सुनते हैं, आगे कार्यक्रमों को सुनते हैं और आप के फैन हैं हम।
0: मैं सीखता तो आप ही लोगों से हूँ साहब। चलिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ही पसंद के गजल गायक में से किसी एक गायक की कोई एक गजल हमें बताएं जो हम दोस्तों को सुनवाएं।
1: अभी हमने बेगम साहिबा की बात की, वैसी एक और जोरदार आवाज है जिनको मैं पसंद करता हूँ, फरीदा खानम जी।
0: फरीदा खानम जी, जी।
1: और इनकी तो बहुत सी गजलें बहुत ही हम सुनते हैं, पर इसकी आज जाने की जिद न करो,
0: आज जाने की जिद न करो जी,
1: आज जाने की जिद न करो। फरियाद हाशमी शाह की गजल है ये, और जिस प्रकार से गाया है तो वही है कि कोई भी रुक जाए, जो जाने वाला हो वो रुक जाए, आज जाने की जिद न करो। यही पहलू में कितने कम शब्दों में कितने खूबसूरती से इन्होंने पेश किया है, लिखा है और मतलब कहा है और गाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं अपने श्रोताओं को और आपको रेडी करता हूँ, आज जाने के जितना करो।
0: तो लीजिए दोस्तों, फरीदा खानूम मैम की ये गजल सुनते हैं नितिन जी की फरमाइश पर।
2: आज जाने

0: नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन दो खूबसूरत गजलों के लिए और आपके कलाम के लिए। तो अगला छोटा सा सवाल बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गजल गायकों में सबसे ज्यादा पसंदीदा गजल गायक आपके कौन हैं?
1: गजल गायक की हम बात करते हैं तो जगजीत साहब मुझे बहुत पसंद है
0: जी।
1: उनकी गायकी बहुत एल्बम सुने हैं। और फिल्मी बात करें हम तो तलत महमूद साहब, ये भी जो मखमली आवाज है,
0: तलत महमूद साहब जी,
1: तो वो एक अलग ही तरह के गाती है। उनके जितने भी गायकी है लगता है कि एक दर्द होता है, अच्छी गजल की मतलब हंसने वाली गजल शायद कम होगी, पर जो गजल का जो मूड होता है उसमें शायद हम एक नाकाम आशिक होता है या एक वो मूड होता है, मुझे उसमें तलत साहब की मखमली आवाज बहुत फिट बैठती है
0: जी।
1: ये दो गायक मुझे बहुत पसंद है मन से।
0: बेहतरीन। तो नितिन जी, इसी बात पर आपकी कोई गजल हो जाए।
1: शुक्रिया। तो अभी भारत में हूँ, जैसे आपने कहा था मैं दुबई में रहता हूँ, तो वहाँ का मौसम अलग होता है और जो छुट्टियाँ मिलती हैं हम भारत आते हैं और यहाँ का जो मौसम होता है बरसात, तो ये हमारे अंदर थकिंग उतर जाती है
0: जी।
1: उस पर ये एक उसका मतलब लिखा था मैंने, मेरे अंदर जो भर गया मौसम
0: जी,
1: मेरे अंदर जो भर गया मौसम, मुझको बेबाक कर गया मौसम, तेरे चेहरे का आईना देखा,
0: तेरे चेहरे
1: का आईना देखा, देख करके निखर गया मौसम
0: जी।
1: ये अलग मोड़ किए थोड़े
0: जी जी।
1: रंग भर के जहां के गुलशन में, रंग भर के जहां गुलशन में, लौट कर अपने घर गया मौसम।
0: वाह क्या बात है।
1: शुक्रिया। छुप गई थी जहां तेरी नजरें, छुप गई थी जहां तेरी नजरें, बस वहीं पर ठहर गया मौसम।
0: मौसम
1: जल्दी जाकर उसे बुला लाओ, जल्दी जाकर उसे बुला लाओ, जाके देखो किधर गया मौसम,
0: किधर गया मौसम।
1: जब हम दुबई जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बरसात का मौसम कहाँ चला गया, जो
0: कहाँ चला गया,
1: भारत में हम महसूस करते हैं।
0: बेहतरीन।
1: मैं बुलाता ही रह गया उसको
0: जी,
1: मैं बुलाता ही रहा उसको, मुस्कुरा कर गुजर गया मौसम,
0: मुस्कुरा कर गुजर गया मौसम। बहुत खूब।
1: मेरे अंदर जो भर गया मौसम, मुझको बेबाक कर गया मौसम।
0: बेहतरीन।
1: धन्यवाद। शुक्रिया।
0: बेहतरीन। तो नितिन जी, अगले कौन से गजल गायक हैं जिनकी गजल आप हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहते हैं?
1: गजल की हम जब बात करते हैं तो लता जी और मदन मोहन जी का कॉम्बिनेशन तो कोई भी नहीं पूछ सकता
0: जी जी।
1: जैसे लता जी और मदन मोहन जी ने फिल्मी इतनी गजलें दी हैं कि उसके बारे में क्या कहा जाए
0: जी।
1: पर जो मुझे सबसे हॉन्टिंग लगती है उनकी, वो है रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे।
0: ओहो।
1: दिल की राहें की एक गजल है और नक्शाल पुरी जी ने लिखी है और शब्दों का खेल लिखी है, फिर लता जी याद आएगी क्या कहूँ मैं नहीं हूँ कुछ कह सकूँ तो, और मदन मोहन साहब का म्यूजिक तो रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। तो ये शायरी शायद बात होती है जो ऐसा कलाम लिख देते हैं कि जो हमेशा के लिए सही रहता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय के लिए, ये हमेशा के लिए है, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे।
0: बेहतरीन बेहतरीन। तो चलिए आपकी ही फरमाइश पर ये गजल हम सुनवाते हैं हमारे दोस्तों को।

0: नितिन जी, अगला सवाल मेरा बहुत छोटा सा और बहुत मासूम सा है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? आप जब भी आपको खाली वक्त मिलता है, आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं?
1: एक तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लगभग कहानियां, किस्से, किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: जो खाली होता है समय मेरे पास में तो। और फिर अब मेरा भी होता है या फिर अपने दोस्तों से बातचीत करने का। अब आजकल बहुत से माध्यम हो गए हैं, फोन तो है, व्हाट्सएप भी है, तो अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहना मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। दोस्ती वैसे भी एक ऐसा जज्बा है जो हम इस संसार में बनाते हैं, हमें ऊपर से नहीं मिलता, हम बनाते हैं, हम दोस्त चुनते हैं। बेहतरीन। तो अगला कलाम मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी अगली गजल, अपनी अगली नज्म, जो भी आप हमें सुनाना चाहें प्लीज।
1: भाई, और ये छोटी बहन की गजल कही है मैंने, इसका भी मोड़ थोड़ा सा शुरुआत में अलग ही है।
0: चुप
1: से देखे तिरछी चिट्ठन
0: जी,
1: चुप से देखे तिरछी चिट्ठन
0: जी,
1: थमने लगती दिल की धड़कन,
0: थमने लगती दिल की धड़कन जी।
1: जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदी उर्दू दोनों गंगा जमुनी तहजीब के तहत दोनों शब्दों का प्रयोग करना पसंद करता हूँ, लोगों को भी समझ में आए और आज की यंग जनरेशन को भी समझ में आए। चुप से देखे तिरछी चितवन, थमने लगती दिल की धड़कन, सबके हाथों में है खंजर, सबके हाथों में है खंजर, किससे कह दूं मन की तड़पन, मन का दरिया उथला उथला, मन का दरिया उथला उथला
0: जी,
1: फिर भी होता हर पल मंथन
0: जी।
1: हमने दुख में जीना सीखा, हमने दुख में जीना सीखा, कैसे भाते सुख के बंधन। समीर भाई, ये अगला शेर मुझे बहुत पसंद है, ये फिलोसॉफिकल है, थोड़ा दार्शनिकता का पुट है। तन की गठरी माटी माटी, तन की गठरी माटी माटी
0: जी,
1: मन का कंचन कंचन,
0: मन का कंचन कंचन, क्या बात है।
1: एक और है आज के युवाओं के लिए
0: जी,
1: तू ही कह दे तेरे हाथों, तू ही कह दे तेरे हाथों, कैसे दे दू माँ के कंगन।
0: ओहो,
1: और अब भारत आते हैं तो भारत माता का भी याद आती है, और 15 अगस्त भी आ रहा है, तो ये 15 अगस्त के लिए अपने सब देशवासियों को दे रहा हूँ मैं ये शेर। मेरी धरती मेरी माता, मेरी धरती मेरी माता, मेरा तन मन तुझ पर अर्पण।
0: बहुत खूब।
1: और अंतिम शेर है इसका, मकसद कह सकते हैं इसको, मेरा नाम नहीं इसमें
0: जी,
1: घर ये सचमुच सोना होगा, घर ये सचमुच सोना होगा, सबके बन जाएगा कुंदन।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत, क्या बात।
1: शुक्रिया,
0: है
1: शुक्रिया शुक्रिया
0: शुक्रिया। काश ये शब्दों से खेलने की कला मुझे भी आती होती तो मजा आ जाता साहब। बहुत मजा आ गया।
1: आपकी तो आवाज हमें मिलती, आपके बोलने का अंदाजा हमें मिलता, तो क्या कहते हैं तो होता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आप तो मतलब तो बड़ा है मेहरबानी, बड़ा अच्छे तरीके से गीला गीला कर देते हैं।
1: नहीं नहीं जनाब, आप सही में आपकी आवाज इतनी मीठी है, मतलब क्या कहो, मैं सुकून ले जाती है दिल को, मतलब इतना आपने गीला गीला कहा तो मैं ठंडा ठंडा करता हूँ, दिल इतना ठंडा कर देती है कि सब हम जैसे तनाव स्ट्रेस या तकलीफ होती है हो जाते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो नितिन भाई, अपनी पसंद की अगली गजल कौन सी सुनवा रहे हैं आप?
1: जैसे मैंने कहा कि जिंदगी के हर रूप को हम देखते हैं, और एट द एंड मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाता हूँ, अपने विद्यार्थियों को भी ये कहता हूँ। तो अगर हम बात करें साहिद साहब की और रफी साहब की और जय जय साहब की
0: जी,
1: तो आप भी जानते हैं मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसी तरफ स्वयं उड़ाता चला गया, तो ये फलसफा होना चाहिए हम सबका, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। रफी साहब, देवानंद साहब, हम दोनों, और साहिद साहब, क्या कहूँ मैं, तो ये गजल मैं सबको देना चाहता हूँ कि हम जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता से हमें दूर नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक फरमाया। तो लीजिए दोस्तों, नितिन जी की फरमाइश पर ये गजल सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब की गाई हुई।

0: बेहतरीन गजल। नितिन भाई थैंक यू सो मच। तो अब मैं गुजारिश करूंगा आप अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
1: भाई आप इस प्रकार से बहा के ले जा रहे हैं मुझे कि मैं भावनाओं में बह रहा हूँ और अपने कुछ कलाम जो कुछ कहा है मैंने वो आप शेयर करते हुए उस वक्त जा रहा हूँ जब मैंने लिखा था। तो आप भी समझते हैं कि जब शायर कोई लिखता है तो वो उतरता है ऊपर से, वो खुद नहीं लिखता है या आसपास देख के उसके दिल में वो ख्याल आते हैं, तो कुछ ख्याल मेरे भी होते हैं उसमें
0: जी।
1: और एक लिखा था, मानता हूँ जबर से क्या होगा,
0: जी
1: मानता हूँ जबर से क्या होगा, पर बताओ सबर से क्या होगा।
0: वाह।
1: तो कई बार विद्यार्थी से बात करता हूँ तो हम हमेशा सकारात्मकता की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पर जहाँ नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों एक दूसरे से टकराती हैं वहाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मानता हूँ जबर से क्या होगा, पर बताओ सबर से क्या होगा।
0: जी
1: क्यों सिखाते हो बोलना सच ही, क्यों सिखाते हो बोलना सच ही, इस अधूरे हुनर से क्या होगा।
0: वो क्या बात है, क्या बात है।
1: कई बार विद्यार्थी पूछते हैं तो वही बातें जिसमें में आती है यहाँ पे शब्दों में ढल जाती है। राही चलने को ही नाराजी हो, राही चलने को ही नाराजी हो, एक बस रह बर, एक बस राह बर से क्या होगा।
0: आहा वाह वाह अमेजिंग।
1: आज तो हम जिस जमाने में जी रहे हैं व्हाट्सएप लिखे हैं, उसमें एक मैसेज भेज देते हैं, पर उस पर लिखा था तभी तो पास आके मिल भी लो, तभी तो पास आके मिल भी लो, खैरियत की खबर से क्या होगा।
0: बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कभी आकर मिल भी लो, सही कहा आपने, सही कहा।
1: अगला शेर देखिए
0: जी।
1: आसमां चांद से ही कहता है,
0: जी
1: आसमां चांद से ही कहता है, रुको भी रात भर से क्या होगा।
0: वाह वाह वाह, रुको भी रात भर से क्या होगा, कमाल हो गया, बहुत सुंदर।
1: फिर भी है वही हम विरोधाभास दिखाते हैं, तो मिला है दोस्तों से इतना सी, मिला है दोस्तों से इतना सी, अब तो असली जहर से क्या होगा।
0: ओहो
1: अब विरोधाभासी कविता है ये, इसमें मतलब गजल उसने उस उम्र में लिखी थी
0: जी।
1: और इसका अंतिम शेर है या मक्का कहें इसको, मैं गिरूंगा तो उठ ही जाऊंगा, मैं गिरूंगा तो उठ ही जाऊंगा, गिरा जो तू नजर से क्या होगा।
0: ओहो ओहो क्या बात है,
1: मैं गिरूंगा तो उठ ही जाऊंगा, गिरा जो तू नजर से क्या होगा, मानता हूँ जबर से क्या होगा, पर बताओ सबर से क्या होगा,
0: पर बताओ सबर से क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत भाई, वाह, सुन के ही मजा आ गया। आपके मुझे लगता है कि छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो ज्यादा खुशनसीब हैं जो आपके साथ ज्यादा वक्त गुजार पाते हैं। हमें तो जितना वक्त मिल रहा है हमें उसी में बस मजा आ रहा है, क्या बात।
1: नहीं ये तो मेरी खुशनसीबी की मैं आपके साथ हूँ, जैसे आपने कहा दिन से, मैं यही मानता कि मैं आपके साथ और समय बिता पाऊँ, साथ में आपके घूम पाऊँ और आपकी बातें सुन पाऊँ।
0: चलिए फिर उस जिन्न को ढूंढ के मैं आपके पास लाता हूँ। अच्छा नितिन भाई, तो अगली कौन सी गजल सुनवा रहे हैं आप हमारे दोस्तों को?
1: अगली जो गजल मेरे के करीब है, जो मेरी माँ को भी बहुत पसंद थी, एक गैर फिल्मी गजल है जिसे आशा भोसले जी ने गाया है
0: जी।
1: आशा भोसले जी की गजलें मुझे बहुत पसंद है, उमराव जानकी कहें, पर ये उनसे भी थोड़ी आगे जाती है क्योंकि ये मिर्जा गालिब साहब की है और जयदेव जी का उसमें संगीत था और इसे लता जी ने भी गाया है और बहुत से दूसरे गायकों ने भी गाया है, पर आशा जी ने जिस अंदाज से गाया है वो सबसे बेहतरीन लगता है मुझे और मेरी माँ को
0: जी।
1: तो कभी निकी भी उसके जी में जला जाए हैं मुझसे, दफाएं करके अपनी याद शर्मा जाए हैं मुझसे। गालिब साहब हो और आशा जी हो तो फिर, और जयदेव साहब का
0: डेडली कॉम्बिनेशन है
1: जी जी,
0: बहुत सुंदर,
1: जहाँ चल जाता है शादी के नजर लगता है।
0: तो लीजिए दोस्तों, नितिन जी की फरमाइश पर आशा भोसले जी की गाई हुई ये बेहद खूबसूरत सी गजल सुनते हैं।

0: नितिन जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी और भी बहुत सारी गजलें हम सुनना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमें इशारा कर रहा है, तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि जब कभी भी हमारे सुनने वाले आपको पुकारें, जब कभी हमारा दिल कर जाए, तो बस दो चार गजलें लेकर हाजिर हो जाइएगा। हम लोगों को बस यूं समझिए, बस जिंदगी मिल जाएगी वापस से, और क्या।
1: बोलिए भाई, आप एक शेर है, आवाज दे के बुला लो मुझको, मैं गाय वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ।
0: क्या
1: ऐसा एक है, तो आप जब आदेश करेंगे, हुक्म करेंगे, तो मैं हमेशा आपके इसमें हाजिर हूँ। तो और आपके श्रोताओं के लिए मेरा प्यार है, और जिस प्रकार से आपके श्रोता सुनते हैं आपके कार्यक्रमों को, और जिस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं, मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही पसंद करते हैं आपके कार्यक्रमों को। और मेरी खुशनसीबी है, मतलब कि मैं आपके कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहा हूँ। मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ और नहीं इतना अच्छा लिखता हूँ, पर इस प्रकार से आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे, तो लगता है सुनकर कि हाँ, हम भी कुछ हैं।
0: क्या बात,
1: तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को मेरा बहुत सारा प्यार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज आपने सुना डॉक्टर नितिन उपाध्याय साहब को और उनके कलामों को, उनकी पसंदों को, उनके बारे में जाना। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको मोहब्बत हो गई होगी इनसे, और हम फिर से पुकारेंगे, फिर बुलाएंगे नितिन साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, थैंक यू सो मच।

दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और कार्यक्रम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। अपना रेडियो अपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। उन घंटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं। यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, चूंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसान साथी चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान

कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबीकेबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें, क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर ले, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भी 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषज्ञ से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषज्ञ की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफ़ी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है, अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें, तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात, समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, क्या आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का, और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा और

0: वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद एक हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: की राखी। जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें, बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें। और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे। अब फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और मित्रों कैसे हैं, आपने जानकारी पाकर हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जरूर अपने खेतों में नर्सरी लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पथरीला इलाका है तो हमारे किसान साथी सब्जी भी लगा सकते हैं, साथ साथ में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी थोड़ा देना चाहते हैं, टमाटर से जुड़ी है, क्योंकि टमाटर उगाने के लिए जलवायु परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए, पुष्पन एवं फल बनने के लिए भारी बारिश बादल नुकसानदायक है क्योंकि यह फूलों और फलों को गिरने का कारण बनता है, ये पौधे पाला और अधिक नमी के सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं, फल उगने बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही है। तो ऐसे में किसान साथी कर सकते हैं अपनी अपनी खेती को लगा सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं। तापमान की अगर बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है, यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है, टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता आमतौर पर सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का साथ ड्रिप सिंचाई की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं उस पर भी अपन ध्यान केंद्रित कराएंगे। फसल में पानी की आवश्यकता 600 से 1500 मिलीलीटर वर्षा के बराबर होनी चाहिए और उचित मिट्टी की अगर बात करें तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आवश्यक स्तर 6.0 से 7.5। यदि पीएच आपका 6.0 है तो चूना डालें, यदि पीएच 7.5 है तो जिप्सम डालें उसमें। तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में आइए एक और गीत को सुन लेते हैं और इसके बाद हम किसान साथियों के लिए बताएंगे कि इस तरीके से बर्मी कंपोस्ट हमारे किसान साथी कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM। आपका रेडियो अपनी बात है।

रेडियो टांटे अभी 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, भीली गीत का आनंद लिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे किसान साथियों की खेत खाली है तो अभी क्या कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, पशु मल, मूत्र एवं पत्तियों के डी कम्पोस्ट की विशेष प्रजाति के केचुआ के सहयोग द्वारा कम्पोस्ट में बदला जाता है। यह प्रतिक्रिया पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ किसानों के लिए अति उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा पर होने वाले प्रभावों का वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से सुधार होता है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाऊ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुआ होते हैं। प्रायः 1 केचुआ 2 से 3 कोकीन प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कोकीन से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुआ निकलते हैं। 1 केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुआ पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह तक प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन 1 केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों में से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट 60 से 70 दिनों में तैयार कर देते हैं। अब इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले केचुआ का चयन करना चाहिए। केचुआ का चयन कैसे होता है? वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र हो, प्राकृतिक तापमान के उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो व कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में

फसल अवशेष आपको पता होगा, फसल अवशेष अभी है, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है इसमें। चुनाव कैसे करें स्थान का? ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां छप्पर की छाया या टीन का सेट, कंक्रीट छत का प्रबंधन करने की सुविधा हो, साथ ही तापमान, वर्षा, अन्य शत्रु जैसे कि चूहे, छिपकली, सांप, नेवला और पंछियां जो रहते हैं उसका प्रबंधन तय हो। बेड बनाना यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बर्मी कंपोस्ट बनाने के कई तरीके रहते हैं, किसान अपनी सुविधा एवं व्यवस्था के अनुसार उचित विधि का चुनाव कर सकता है। जैसे कि ज्यादातर किसान मुख्यतः एक विधि से बेड बनाते हैं जिसमें बेड बनाने के लिए 10 फीट लंबाई तथा 3 से 4 फीट चौड़ाई और 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई के आकार की पक्की ईंटों का बनाना चाहिए जिसे सीमेंट से जोड़ा जा सकता है और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपोस्टिंग किसी भी प्रकार के पात्र जैसे मिट्टी या चीनी के बर्तन, बांस बेसिन, लकड़ी बक्से, सीमेंट टैंक आदि में किया जा सकता है। गड्ढों व बेड की लंबाई चौड़ाई उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्धारित करें जिसकी गहराई व ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक ना रखें। कंपोस्टिंग के लिए सबसे नीचे सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे यानी घास फूस, केले के पत्ते, नारियल के पत्ते, फसलों के डंठल की तह बिछाएं। इसके बाद इसे तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं और पानी का छिड़काव 1000 से 1500 केंचुआ प्रति मीटर की दर से छोड़ दें। इसके ऊपर सड़ा गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिसके खाद बनाना चाहते हैं आंशिक रूप से सड़ाने के बाद डालें और इसे टाट व बोरी से ढक सकें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें जहां पानी का ना ठहरता हो। बेड की भराई करना प्रथम स्तर रहता है कि बने हुए बेड में सबसे नीचे 3 इंच मोटी ईंटों की टूटे हुए टुकड़ों से या कंक्रीट की तली बनानी चाहिए और उसका 1 से 2 इंच ढाल रखना चाहिए। उसमें एक जिस और ढाल है 2 से 3 इंच चौड़ा पाइप लगाना चाहिए जिस तरफ ढाल है। द्वितीय स्तर रहता है जल्दी ना सड़ने वाले पदार्थ जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों और सूखी भूसी या प्यार जो रहता है 4 से 5 इंच मोटी बिछा देना चाहिए। 7 दिन पुराने गौमूत्र से अच्छे से भिगा देना चाहिए। तीसरा स्तर रहता है कि द्वितीय स्तर के ऊपर 3 इंच मोटी सड़ी हुई गोबर की परत या गोबर गैस की निकली सलरी बिछाकर पानी में भिगो देना चाहिए। चौथा स्तर रहता है शेष बसी जगह में पशुओं का गोबर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किसान अगर चाहे तो सब्जी के छिलके, भूसा, घास, पशुओं का बचा हुआ चारा आदि का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 15 दिन पहले अड़सड़ा हो जिसे केंचुआ खा सके आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बेड केंचुआ पर कैसे डालते हैं? बर्मी कंपोस्ट पिट के लिए एक विशेष प्रकार के केंचुए जिसे रेड बर्म कहते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोडिया है इस पर प्रयोग करने अपने बने बेड में 10, 4 और 2.5 पेट भरे गोबर में 5 किलोग्राम केंचुआ को ऊपरी सतह पर फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद केंचुआ सभी पेट में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी सतह पर जूट से बने बोरे का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहता है उसके अनुसार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर बेड हो उसके ऊपर बरसात और धूप को बचाने के लिए छत और छप्पर होना अति आवश्यक है। बर्मी कंपोस्ट जब खाद बन जाती है उसके कैसे निकालना चाहिए? जब खाद बन जाती है तो उसमें 7 दिन पूर्व से पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। कंपोस्ट को देखने चाय की पत्ती की तरह दिखने लगे और पकड़ने पर चिपकने नहीं चाहिए और बनी खाद में केंचुआ की संख्या कमी और बर्मी में उपयुक्त पदार्थ के गलने के आधार पर खाद को बाहर निकालना लेना चाहिए। निकालते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खाद को थोड़ी
थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं और जिससे केंचुआ अपने आप नीचे चले जाते हैं। कंपोस्ट एकीकरण

जो साधारणतः 60 से 70 दिन में कंपोस्ट बंद कर तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें, जिसमें केंचुआ नीचे चले जाए और कंपोस्ट एकत्रित कर छान कर केंचुओं अलग कर दें और छाया में सुखा कर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। उपयोग एवं उत्पादन कैसे होता, तैयार खाद को कहा उपयोग करना चाहिए, इसकी योजना पहले बनाना चाहिए कि आप दलहनी की फसल अगर बोते हैं तो 2 टन बुवाई से पूर्व उसमें डाल देना चाहिए। तिलहनी की फसल में 3 टन रहता है बुवाई से पूर्व। मसाला व सब्जी अगर की फसल लगाते हैं तो 4 टन बुवाई से पूर्व। फूल वाली फसल लगाते हैं तो 5 टन बुवाई से पूर्व। फलदार पौधों का रोपण के समय 5 किलोग्राम या वृक्ष में अपन डालते हैं। गमलों में मिट्टी के भार के पर 10%, लॉन में अगर डालते हैं 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट बनाने की विशेष विधि को हमने जाना। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: शराब मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
2: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
2: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
3: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
2: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: अभी आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है। जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करें। जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
0: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपकी आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: हमारे
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़ी गाभिन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो गाभिन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
3: तो किसान भाइयों बहनों आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
4: मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बात है।
5: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है, इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
6: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुनना, ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं उसके हिसाब से हमने को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और यही सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
7: राजस्थान में पानी की कमी है,
6: राजस्थान में वैसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है तो पानी की क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोले कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत फुरुत खाद जो अपने ह्यूमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
7: नई
6: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
5: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
6: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल लेने से बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से जैविक रासायनिक होता है 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी गिराएगी भी अपने कहते यार आपकी चीज बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी लेते रहते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे ही करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
5: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
0: और साथियों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, खासतौर पर उन

0: साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवी है वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94-25-41-36-03। इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
1: तो जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
0: और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।

0: गेम खराब मारे थोड़ा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार, जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नितिन और आज मेरे साथ श्री अनुपम मिश्रा जी जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: अनुपम जी, हमारे सुनने वालों को कुछ अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: जी सर, मेरा छोटा सा परिचय है। विष्णु के तृतीय अवतार श्री वरा भगवान की पावन भूमि श्री सोनोजी धाम का दासगंज उत्तर प्रदेश के श्री सरल धाम में जन्मा अनुपम मिश्र अणु साहित्यकार कवि गीतकार। शैक्षिक सफर मेरा रहा है एमए इंग्लिश बीएड और पूर्व प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूल राजस्थान, युवा कवि आगरा आकाशवाणी केंद्र, मुख्य सचेतक आंदोलक बीएड बेरोजगार संघ के रूप में जाना जाता हूँ सर मैं। वर्तमान में मैं सामाजिक मंच सरल प्रेरणा साहित्यिक संस्था साहित्य लोक रजिस्टर्ड और दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था सक्षम संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ सर।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: अनुपम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं
0: जी,
1: क्योंकि तो मुझे लगता था कि समाज की को अगर सही दिशा में एक सही नेतृत्व मिल जाए
0: जी
1: तो एक आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। मेरे पिता श्री विष्णु दयाल शर्मा सरल जी रेलवे में होते हुए भी उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था
0: जी,
1: और एक आदर्श समाज नेता अभिनेता और सरल प्रेरक मोटिवेटर ही प्रदान कर सकता है, इसलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं।
0: तो अभी आप क्या करते हैं?
1: अभी मैं कोचिंग सेंटर में मोटिवेटर हूं
0: जी। अच्छा,
1: सरल प्रेरक के रूप में इंग्लिश टीचिंग करता हूं मैं।
0: आपका तो हिंदी भी इतना बहुत ही बढ़िया है और आप इंग्लिश, आप दोनों वाइस वर्सा ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश भी बोल रहे हो अच्छी तरह से बोल सकते हैं और हिंदी भी,
1: दोनों
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है।
1: ओके सर,
0: तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: अनुपम जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे, आपका फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: जैसा अभी सर आपने कहा कि इंग्लिश मेरी अच्छी है, तो इंग्लिश अच्छी का श्रेय मैं अपने श्रद्धेय टीचर जो देवलोक गमन कर चुके हैं, गिरिजा शंकर शुक्ला जी सर, इंग्लिश के टीचर थे, जिन्होंने जटिल टॉपिक ग्रामर और ट्रांसलेशन को मैथ के फॉर्मूले के अंदाज में समझाकर मुझे योग्य बनाया, और आज भी वो उनका पढ़ाया हुआ मेरे दिलो दिमाग में अमिट है। दूसरा ड्राइंग टीचर जो विजय सक्सेना जी सर थे, उन्होंने हमेशा मुझे ए ग्रेड दिया और बेहतर ड्राइंग के लिए टिप्स देते रहते थे, तो मेरी आज ड्राइंग बेमिसाल है और मेरे बच्चों की भी, आशीष और देवांशु और मेरे स्कूली बच्चों की भी ड्राइंग बेमिसाल है, अवार्ड प्राप्त करते हैं।
0: क्या बात है अनुपम जी, ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा नसीब होता है जो बहुत ही, कहने का मतलब है इतने सारा टैलेंट एक इंसान में भरा रहता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: बड़ी खुशी हुई मुझे। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा नगमा सुनते हैं।

0: मेरा चौथा सवाल, कौन से तीन शब्द आपको सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं?
1: सर बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरे पैतृक गुण मिले हैं मुझे समाजी सेवा करने का, मानव सेवा करने का, तो तीन शब्द हैं जो मुझे मिले हैं, परहित, लिहाज और सरल प्रेरणा, जो कि आदर्श समाज के लिए बेहद जरूरी हैं
0: जी।
1: और जिसको मैंने कला की दृष्टि में अपनाया है अपने जीवन में, अनुगायन, अनुगीत और सरल प्रेरक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में
0: जी।
1: और लिहाज का दूसरा रूप अनुगायन है सर, जो मैं अच्छा प्रमाणित कर पा रहा हूँ अपने गायन में सर।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आइए सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी अनुपम जी?
1: सर, इस संदर्भ में एक ही बात कहूंगा कि मेरा स्वभाव, मैं घर में लड़ेता रहा था, बहुत लाड प्यार में पला था, मेरी हर जिद पूरी होती थी। तो एक दिन मेरी जिद पूरी नहीं हुई आलू पराठे की, तो एक दिन मजबूरी बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद बनाऊंगा, मत बनाओ कोई भी मेरे लिए। तो आलू का पराठी बनाई, तो मैंने वहां कहीं पे तो आलू जा रहे थे, कहीं आटा जा रहा था, और आग की लपटों ने भी मुझे झुलसा दिया, स्किन को जला दिया। बड़ी मुश्किल से ये बने, मोटे तो मोटे मोटे जोटे जले फले जैसे भी बने थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थे। तो सारे बनने के बाद सारे मेरे परिवार जनों ने टेस्ट करने में खा लिए। मुझे बखूबी मुश्किल से मुझे एक दो पीस ही मिला, तो सब लोग कहने लगे ऐसे रोज बनाया करो भाई। तो इस तरह से मैंने ये अपनी जिद पूरी की, और आलू पराठे मैंने पहली बार बनाए जो कि टेस्टी तो बने लेकिन अच्छे नहीं बने,
0: यानी जल गए थे।
1: जल गए थे और आलू कहीं बाहर निकल निकल के भाग रहे थे उसके। तो मेरा जी, तो इस तरह से
0: अरे वाह,
1: सबको टेस्टी लगे, सबको टेस्टी लगे।
0: तो दोस्तों सुनते हैं एक शानदार गीत।

0: पोटी
1: क्या
0: है परेशान?
1: हाथ छोड़।
0: आई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: अनुपम जी, आपकी हॉबीज क्या है और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: सर, मेरा स्वभाव है कि लोगों के हित में काम करना
0: जी,
1: और मेरे पैतृक गुण हैं, तो मैंने अपनी हॉबीज को चुना। वैसे तो हॉबीज मेरी कई सारी हैं, स्पोर्ट्स में भी है, एजुकेशन में भी है, मोटिवेशन में भी है, लेकिन मानव सेवा को मैंने अपनी मुख्य हॉबी के रूप में अपनाया।
0: अच्छा।
1: और मुझे लगा कि इस हॉबी से एक समाज को सशक्त रूप में सामने लाया जा सकता है, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी

0: प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसको मार्गदर्शन देना है।
1: जी
0: और सबसे बड़ी बात कि हमें अपना जीवन, बच्चा अपना जीवन कैसे जिए, तो उसके लिए मैं प्रेरित करता हूँ उसके
1: अच्छा
0: जीवन में।
1: जी
0: हाँ जी, और इससे एक मैं ये सामने वाले बच्चों को फायदा भी बताता हूँ
1: जी
0: कि इस सेवा भाव से, इस हॉबी से मनुष्य को समाज में कहीं भी डर नहीं लगता है, उसे लगता है सब मेरे हैं।
1: ओके
0: जी सर।
1: जी जी तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आपकी खुशी के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती है?
1: बहुत ही सही प्रश्न पूछा है सर, और मैं जाने अनजाने में इन बाधाओं को महसूस करता हूँ
0: जी।
1: तो अणु मन की अगर बात माने तो मुझे यही लगता है कि सामने वाले को समझ पाने में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, कि सबको अच्छा समझता हूँ सर मैं, क्योंकि मेरी यदि मानव सेवा की भावना है तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। और हकीकत तो ये है सर कि आज दुनिया में जलन करने वाले, टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं, तो आगे बढ़ने से आपको हर्ष में रोकते रहते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा मेरी यही है। और मुझे खुशी मिलती है लोगों की भलाई करने में, लेकिन मेरी लोग टांग खींचते हैं, तो ये सबसे बड़ी बाधा मुझे लगती है सर, कि मैं सबको अच्छा समझता हूँ।
0: ये तो सही, आप सही कह रहे हो कि अच्छे लोगों की आज कदर नहीं है इस दुनिया में।
1: जी सर,
0: ये आपने बहुत सही बात कही है।
1: जी सर।
0: तो दोस्तों चलिए सुनते एक और नगमा।

0: आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या है?
1: सही सवाल है सर, और मेरे मन को गदगद कर दिया आपने क्वेश्चन पूछ के
0: जी।
1: और पहली बार मुझे मिला कि मैंने बीएड बेरोजगार संघ का मैं आंदोलक रहा, तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी रही कि सभी बीएड बेरोजगार संघों बेरोजगारों को हमने गवर्नमेंट टीचर बनवाया हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। तो उनको सेवारत कराने में मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि रही, वो सब खुश हैं आज। और दूसरी खुशी में उपलब्धि ये रही कि मेरी बेटी आश्लेषा एमएनसी में सेटल हो गई, यूएस एमएनसी में सेटल हो गई। और मेरा बेटा देवांशु बेटा है जो इलेक्ट्रीशियन बन गया
0: जी।
1: और मेरी निजी उपलब्धि आप कहें तो आगरा आकाशवाणी पर मेरे काव्य पाठ अणु गायन प्रसारण होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मुझे आत्मविश्वास आया और आज आपके सामने कलाकार के रूप में अणु गायन प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: क्या बात है अनुपम जी, बड़ी खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई मुझे यह सुनकर।
1: थैंक यू सर।
0: तो लीजिए पेश है एक बढ़िया सा गीत।

0: अनुपम जी, क्या आप सपनों में विश्वास करते हैं?
1: बिल्कुल सही सर, सपनों में विश्वास आज मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के कलाकार और इस गीतों वाले आपके साथ जो मैं अपना कला प्रदर्शन कर पा रहा हूँ, प्रस्तुति दे पा रहा हूँ, मेरे सपने की वजह से ही है। और मैंने सपना देखा था कि मैं अभिनेता बनूं या कलाकार के रूप में सामने आऊं समाज में, और आगरा आकाशवाणी पर मैं अपनी काव्य पाठ करूं, आणु गायन करूं। तो सपने की वजह से ही सर मैं आपके साथ आज दिखाई दे पा रहा हूं सर। तो मुझे विश्वास है कि सपना जरूर देखना चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए उसको पूरा करने में।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा जिंदगी का एक तजुर्बा है, जो मैंने ये देखा है कि लोग सपने तो जरूर देखते हैं, मगर सपने के पीछे कितने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, बहुत ही कम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर,
0: क्योंकि
1: और उसकी लिहाज और रेस्पेक्ट नहीं कर पाते सर उनका।
0: हाँ, क्योंकि एक चीज जो सपना जो हम देखने के बाद उसके पीछे लगना बहुत जरूरी है, उसके पीछे टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है,
1: प्रयास करने चाहिए सर।
0: जी, प्रयास बहुत जरूरी है, तभी जाके कुछ हासिल होता है।
1: जी सर बिल्कुल सही कहा सर।
0: तो दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आप जी हमारे प्रोग्राम में आए और अपने जीवन की काफी सारी बातें बताई। हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और आप उन्हें ये प्रोग्राम गिफ्ट भी कर सकते हैं।
1: ओके सर, यस सर, यस सर। तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर कि मुझे अवसर प्रदान किया अपनी कला का प्रदर्शन करने में और सामने वाले को प्रेरित करने के लिए मुझे आपने ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: दोस्तों, आज के कलाकार के मंच पर आज फिर एक नए टैलेंट के साथ हम मौजूद हैं। आपको पता है ये मंच है नए टैलेंट्स का, नए गायकों का, नए प्रतिभाओं का। हमारे साथ हैं आज पीयूष श्रीवास्तव जी। बाकी की बातचीत हम पीयूष जी से करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। वो अपने बारे में बताएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको उनको जान के बहुत अच्छा लगेगा। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
2: जी समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मुझे इस मंच पर एक चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी।
1: तो पीयूष जी, हमारे जानने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
2: जी मैं बैंगलोर में हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ और यहीं बैंगलोर में काफी सालों से सेटल्ड हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जी तो लाइक जन्म तो मेरा कानपुर यूपी में हुआ था, परवरिश हैदराबाद में हुई, फिर जॉब इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद फिर जॉब बैंगलोर में लगी, तो तब से यहीं पे हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे, और बस यही जिंदगी कट रही है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है पीयूष जी। ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपका जन्म कानपुर में हुआ, क्योंकि मैं भी कानपुर का ही निवासी हूं। मेरा जन्म भी कानपुर में हुआ।
2: अरे वाह, बहुत अच्छे समीर जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी मैं अभी भी जाता रहता हूँ कानपुर, मेरे अभी रिलेटिव्स वगैरह हैं कानपुर में
1: जी,
2: तो अभी भी जाना आना बीच बीच में होता रहता है मेरा, बहुत अच्छा लगता है वहां जब जाता हूँ तो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही रंगीन, बड़े ही प्यारे प्रोग्राम को पीयूष जी की ही आवाज में गाए हुए इस नगमे से।

0: बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा संगीत। पीयूष जी, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जैसे आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर्स में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, अगर कोई बच्चा उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, खासकर कि आज की तारीख में ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारी इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं आजकल, लेकिन आई थिंक आजकल आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत तरक्की कर रही है इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में। आजकल तो काफी लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग, इसके जॉब्स जो है वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि काफी सारे ले ऑफ्स वगैरह होंगे, इनफैक्ट हो भी रहे हैं। बट मेरा ऐसे नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, इंजीनियर जो होता है वो काफी अलग सोच रखता है, और एक सच्चा इंजीनियर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नई चीज आए, उसको जो है वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से सीख लेता है और उस नई टेक्नोलॉजी में फिर महारत भी हासिल करता है। तो यदि आप काफी मेहनत करेंगे, यदि आपको हमेशा जिज्ञासा रहेगी नई चीजों के बारे में पढ़ने की, उसके बारे में सीखने की, तो आप हमेशा इस फील्ड में अव्वल आते रहेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने दिमाग को व्यस्त रखिए और हमेशा जो है मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसमें दिमाग का काम हमेशा रहता है, तो अपने दिमाग को चुस्त रखिए, बस इतना ही कहूंगा।
0: बहुत बढ़िया पीयूष भाई, बहुत बढ़िया। आज के बच्चों के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट और बिल्कुल काम की बात बताई आपने। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: पीयूष भाई, लोग आपके बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या कभी? कोई ऐसी कि जो ज्यादातर गलतफहमी होती हो और बाद में क्लियर होती हो?
1: अच्छा, ये तो आपने काफी दिलचस्प सवाल पूछ लिया समीर जी।
0: जी
1: मुझे लगता है कि एक्चुअली कई लोग, मेरे रिश्तेदार भी और ऑफिस में भी कई लोग मुझे सीरियस टाइप का इंसान समझते हैं। और ये सच बात है कुछ हद तक कि मैं दूसरे लोगों के अनुपात में कुछ कम बोलता हूँ,
0: जी
1: पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मेरे जो क्लोज लोग हैं, जो जब मैं अपने कंफर्ट जोन में होता हूँ अपने मित्रों के साथ, तब मैं बहुत शरारतें और बहुत हंसी मजाक करता हूँ सबके साथ।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: ऐसा
0: है,
1: कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। आई थिंक ये गलतफहमी है कुछ लोगों को, काश मैं इसे दूर कर पाता।
0: बस आज दूर हो गई साहब, आज दूर हो गई। जो भी
1: जी
0: आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको ये गलतफहमी अगर रही होगी तो वो दूर हो गई। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा नहीं रुकते, एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं पीयूष जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत। पीयूष जी मुझे ये बताइए, अपने बचपन की कोई प्यारी सी पसंदीदा याद बताइए मुझे, कोई मेमोरी।
1: बचपन की याद, देखिए बचपन के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे नानी का घर याद आता है।
0: वाओ,
1: तो हम लोग कानपुर में, मेरी नानी और मामा वगैरह सब लोग वहाँ थे, तो और पुराने जमाने में आई थिंक परिवार भी बहुत बड़े होते थे, तो हम लोग बहुत सारे कजन्स थे। और आई थिंक पुराने जमाने में खैर ना सिर्फ कजन्स और रिश्तेदार बल्कि पड़ोसी, इनका भी मायने बहुत होता। तो हम सबको, किसी को भाई, किसी को मौसी, किसी को मामा, ऐसे बोलते थे। पूरा मोहल्ला मतलब हमारे जैसे रिश्तेदारों जैसा था। तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे और सारे कजन्स आते थे और पड़ोसी और उनके रिश्तेदार सब आते थे, तो बहुत एक मोहल्ला सा, जमघट सा हो जाता था। और हम काफी सारे अटकेलियां करते थे, काफी शरारते करते थे, खूब मौज होती थी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी आई थिंक मेरी मेमोरी है। मैं बचपन के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि काश ऐसे माहौल में फिर जा पाते और फिर खेलकूद कर सकते, लड़ाई कर सकते और गिरते संभलते। तो आई थिंक सबसे अच्छी मेमोरी मेरी यही है।
0: बहुत बहुत प्यारी सी मेमोरी, बहुत प्यारी मेमोरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा गीत।

0: पीयूष जी, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता, फेलियर क्या रही और उससे आपने क्या सीखा और आप ग्रो कर गए?
1: सबसे बड़ी असफलता, देखिए वैसे तो करियर में और लाइफ में काफी बार ऊंच नीच होती है, असफलताएं भी कई बार देखी, पर आई थिंक जब मैं याद करता हूं तो एक सफलता है जो कभी नहीं भूलती ना कभी भूलेगी। वो ये थी कि मैंने 12वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत लोग IIT वगैरह की तैयारी करते हैं, तो मैंने भी की थी और बहुत मेहनत और मन से करी थी। मेरा सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट हो गया था पर रैंक थोड़ा नीचे आया था जिसके कारण मुझे अपनी मनचाही सीट, मनचाही ब्रांच नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से IIT में कभी एडमिशन नहीं ले पाया मैं। और ये आई थिंक सबसे बड़ी असफलता रही मेरी मेरे जीवन की। और आई थिंक उस समय काफी दुख इसलिए भी हुआ था क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन या ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, तो मुझे उस समय तो ऐसा लगा था कि जैसे जीवन की नैया डूब गई। पहले उस जमाने में आई थिंक इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे जितने आज होते हैं कि भाई एक कॉलेज में नहीं तो दूसरे में चले जाओ एंड सो ऑन, बहुत कम ऑप्शंस होते थे। तो खैर ये सफलता रही और हालांकि इस बात का दुख है लेकिन सीखा बहुत कुछ इस असफलता से। सबसे पहले तो मेहनत करना सीखा मैंने, ये भी सीखा कि आप मेहनत एक चीज के लिए करते हो और वो चीज अगर आप नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत असफल हो गई, क्योंकि वही मेहनत फिर और किसी चीज में काम आती है और मेरे बहुत काम आई क्योंकि फिर मैंने एक तरह से मेहनत करना सीख लिया। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि अपॉर्चुनिटीज दूसरी आई और फिर अच्छी जगह इंजीनियरिंग कर भी ली और नौकरी भी लग गई और ओवरऑल करियर ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा काफी। तो मैंने तो यही सीखा कि देखिए जब ईश्वर एक द्वार बंद कर देता है तो दूसरे कई खोल देता है, तो इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा होती है लेकिन कम से कम हताश नहीं होना चाहिए और अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत ही प्यारी बात, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली बात आपने बिल्कुल अपने दिल से बताई। तो दोस्तों,
1: जी सर,
0: एक खूबसूरत सा गीत भी हो जाए पीयूष जी की आवाज में ही।

0: पीयूष जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो क्या होनी चाहिए वो?
1: एक बात के लिए याद किया जाए, देखिए ऐसे तो कोई इतनी प्रतिभा भी नहीं है, इतनी उपलब्धि भी नहीं है कि जो कोई
0: अरे साहब, वो तो हम जानते हैं ना कि आपके अंदर प्रतिभा क्या है
1: जी समीर जी, नहीं मतलब सच कहूं तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसके लिए कोई याद करे, बट हाँ जो जैसे जैसे क्लोज सर्कल्स हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, आई थिंक वो लोग मुझे इतने के लिए जरूर याद करेंगे कि मैंने किसी से द्वेष नहीं रखा जीवन में, और जरूरत पड़ने पर मैंने मदद करी और लोगों के काम आया, तो ये आई थिंक पीपल सम पीपल विल डेफिनेटली रिमेम्बर।
0: ओके, अमेजिंग, ये बड़ी खूबसूरत बात रही। तो दोस्तों, मैं आपके और पीयूष जी के बीच में नहीं आऊंगा, चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत बढ़िया। पीयूष जी, मुझे अपने जीवन के 3 सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो, प्रभाव डाला हो आपके जिंदगी पर, आपकी शख्सियत पर।
1: जी, सबसे पहले तो आई थिंक मेरी मॉम, और खास करके इसलिए क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, इसलिए नहीं कि उन्होंने ये चीजें मुझे कही थी, बल्कि वो ये चीजें फॉलो करती थी। तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो वो जो इंसान कहता है उससे कम सीख मिलती है, जो इंसान करता है उससे बहुत ज्यादा सीख मिलती है।
0: क्या बात।
1: तो मेरी मॉम की मेहनत, उनकी डेडिकेशन, उनकी जो उन्होंने केयर करी न सिर्फ अपने बच्चों की बल्कि पूरे परिवार की, फ्यूचर की, और उन्होंने मतलब जिस डेडिकेशन से अपने न सिर्फ अपने बच्चों का बट सभी का साथ निभाया, आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो मेरा मॉम का ही रहा, इवन गाने के लिए भी उन्होंने ही मुझे सबसे पहले प्रेरित किया था। तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रभाव तो उन्हीं का रहा। फिर मुझे एक अपने मैथ्स टीचर याद है जो जिन्होंने बहुत बचपन में मुझसे एक बार कहा था कि तुम इंजीनियर बनोगे, और मुझे उस समय तक ये नहीं पता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मतलब कभी मैं कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था, पर आई थिंक इन टीचर की वजह से मेरी मैथ अच्छी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने मैथ ऐसे सिखाई थी कि फिर मैथ जैसे सब्जेक्ट से प्यार हो गया था, है ना, क्योंकि मैथ अधिकतर जो है इस उम्र में अच्छी नहीं लगती है बच्चों को, मुझे भी उतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर इन्होंने कुछ इस तरह से मैथ का ज्ञान दिया कि मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। और फिर जब मैं मुझे थोड़ा मैंने थोड़ा अच्छा किया उसमें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंजीनियर ही बनोगे, और वो मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन हो गई आगे के लिए
0: जी।
1: तो वो। और आई थिंक थर्ड पर्सन इज मेरी बेटी, उसने काफी अलग तरह से मुझे सीख दी है, और मैं काफी लाइक बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया। उसके बाद एक समय आता है जब आपको लगता है कि आप सही हो और आपको अब और शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि कि कि आप जो अपने आप को समझते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे आपको क्या समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसने मुझे मॉडेस्टी सिखाई, और अपने आप को दूसरों से व्यवहार करते समय खाली अपने नजरिए से नहीं बल्कि दूसरे के नजरिए से देखना सिखाया। आई थिंक दैट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस टू मी आफ्टर आई ग्रू अप।
0: अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रभावशाली 3 सीखें और 3 व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में रहे जिन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया, क्या बात है
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत पीयूष जी की ही आवाज में।

0: पीयूष जी, अपने को फिट और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए क्या आपका पसंदीदा तरीका है, क्या करते हैं आप?
1: फिट और सक्रिय, एक्चुअली फिट और सक्रिय, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सक्रिय दो तरह से रहना चाहिए सबको। सबसे पहले तो शरीर की सक्रियता, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा है ब्रेन एक्टिविटी। कई बार हम सोचते हैं कि खाली शरीर की सक्रिय